0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: Get ready to move.
1: It's all about the beat.
2: Wow, FM.
3: Only tune super hit channel.
4: Teddy, is it a? Yeah, commercial to sun li.
5: Are you looking for help in English, maths and science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: मुझको ऐसी ना सजा दे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention,
4: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: Get ready to move.
10: It's all about the beat.
11: Wow, FM.
12: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है।
6: It's commercial time.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station.
7: That plays
8: foot tapping music.
9: Huzzah 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.

बिल्कुल अब जिंदगी रवा दवा है अपने जबरदस्त मकासद की तरफ और एक और सुबह हमारे पास शुरू हो चुकी है। उम्मीद नौ के साथ कि आज का दिन बहुत ही जबरदस्त कमाल का और मोटिवेटेड सा रहने वाला है, क्योंकि गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में अक्सर चीजें डिस्कस की जाती हैं जो आपको पूरे दिन के लिए बूस्ट करती हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे। रब्ता करने के लिए मैं आपको बताता चलूंगा मेरे स्टूडियो में लाइव एंटर होने का जो मेन वे है, जो मेन सोर्स है, जी दैट वन इज ओनली व्हाट्सएप आई हैव 0115-7100-971। जितने भी हमारे नॉटिंघम शहर के वासी हैं उनसे गुजारिश है कि जब भी आप मुझे मैसेज करें इस नंबर पे तो अपना पोस्टल कोड और अपना नाम लाजमी मेंशन करें। अगर आप सिटी से बाहर हैं या नॉटिंघम शहर से बाहर हैं तो फिर डेफिनेटली आपने क्या करना है कि आपने अपनी सिटी का नाम मेंशन करना है, अगर नॉटिंघम से हैं तो कौन सी एनजी से हैं या बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यूके से भी बाहर हैं तो फिर आपको कंट्री कोड जनाब 0044 डायल करके उसके बाद ओ नील गाना फिर 5051 जनाब उसके बाद 0115-7100-971 यानी 0044-115-7100-971। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, दुबई से हमें ट्यून अप कर चुके हैं। आतिका अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक्स लॉट, ये भी दुबई से हैं। और जनाब हमारी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक लिसनर हैं अलिशबा, ये जनाब मुझे पहले ही मैसेज कर चुकी हैं, थैंक्स लॉट। और जितने भी हमारे यंगस्टर इस वक्त अवेलेबल हैं जो सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सफर शुरू हो चुका है, कुछ गुजारिशात हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। उनमें सबसे पहले ये है कि अगर आप ड्राइव करते हुए इस वक्त अपने मंजिले मकसूद की तरफ रवा दवा हैं और आप ये सुनना चाहते हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम को, तो एफएम पे आप ट्यून करेंगे हमें 97.1 पे। इसके अलावा डैप पे आप फजा के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं और फिर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अलावा जी आपको मजीद बताता चलूं कि अक्सर मैं कहता हूं ना कि जनाब आप हमें सुन रहे हैं 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे जी? ऐप पे डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा और बहुत ही कार आमद है। आपने जनाब जाना है गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल गया, अगर आप मैक की यूजर हैं या आईफोन यूज करें तो फिर डेफिनेटली भी आपको पता चल जाएगा। वहां जाके जनाब आप सर्च बार में लिखेंगे 97.1 एफएम ऑफिशियल रेडियो फजा के साथ। फिर आप एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर का माइक या बेज कलर का या येलो कलर का, डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है, आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर आपको कहते हुए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। तो जनाब सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं भी बताना चाहते तो कुछ हल्का फुल्का सा जहन में सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। कहते हैं ना कि अगर तुम किसी को याद करने के लिए सच्चे दिल से चाहो तो फिर खानदान की नहीं कायनात की पूरी ताकतें जुट जाती हैं उससे आपको मिलाने के लिए। जनाब बिल्कुल ग्रेट है सार के का ये खूबसूरत डायलॉग है जो मैंने कॉपी किया, मिमिक्री नहीं की। नेवर एवर कैन डू दिस वन, गुस्ताखी नहीं हो सकती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप इमेजिनेशन में सोच रहे हैं तो फिर रिप्लाई भी कीजिए ना। अगर ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ड्राइव करते हुए नॉटिंघम की खूबसूरती सड़कों पर, जितनी डिवेलपमेंट अब हमारी सिटी में हो चुकी है ना, अमेजिंग है, कमाल है। स्टूडियो में आते वक्त बहुत सी चीज़ें याद आती हैं और बहुत सी चीज़ें जहन में, रास्ते में चलते हुए रास्ते में कुछ ऐसे अजनबी लोग मिलते हैं जिनको देख के हल्की सी स्माइल की जाती है। और अब मेरे ना एक बहुत ही प्यारे से फ्रेंड बन चुके हैं, एक अंकल हैं ना, जबरदस्त से तरीके से बड़े स्टाइल से वॉक करते हुए आते हैं और वॉक करते हुए ना अक्सर ये सोचते हैं, देखते हैं बड़े गौर से आंखों में आंखें डालकर, उसके बाद जब पास आते हैं तो हम दोनों अब तकरीबन ना 2 वीक से ऑलमोस्ट ऐसा हो चुका है कि हम एक ही वक्त पे स्माइल करते हैं। यार कमाल का सुकून आता है, कमाल का मजा आ जाता है। और यकीन करें कि ऐसी स्वस्थ मॉर्निंग शुरू हो जाती है और उसके बाद माइंड चलना शुरू हो जाता है कि यार आज की मोटिवेशन क्या होगी, आज का सब्जेक्ट क्या होगा, आज की पर्सनैलिटी ऑफ डे कौन होगा। और डेफिनेटली प्रोडक्शन टीम तो हमारी बहुत ज्यादा वर्क करती है और वो ऑलरेडी हमारा टॉपिक भी अनाउंस कर चुकी होगी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। अलावा जी आपको बताता चलूं कि ड्राइव करते हुए अब बात में वहीं वापस लेके आए, हमारी खूबसूरती जो नॉटिंघम शहर की सड़कें हैं, जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है वो लोग स्पेशली अक्सर केयर नहीं ना करते। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और इस इलाके के लोग हिले हुए होते हैं ना, हम लोग वहाँ पे भी ना, यार तू क्या पता है, तू क्या जानने, निकट ना जुल
ऐसे कुछ लाइन यूज होते हैं। तो जनाब ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज ये इंग्लैंड है, यूके है जनाब, यहाँ पे आपकी नहीं चलेगी। एंड स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 एफएम। लेकिन अगर आप कहीं कॉफी के शौकीन हैं तो यार मुझे भी फिर डेफिनेटली डबल एस्प्रेसो का एक शॉट, अगर आप जो भी लवर्स हैं यार, अगर कोल्ड कॉफी फ्रैपचिनो में आप जाते हैं तो यार माई फेवरेट वन एज वेल, एक मेरे लिए भी ऑर्डर कीजिएगा और उसके बाद ट्यून कीजिएगा 97.1 एफएम को।

0: बिल्कुल जी, मेरे बीजे में बीबी भी बार बार चीख चीख के कह रही है नेवर एवर से गुड बाय जी, गुड बाय बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागत है उन तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे या फिर डैब पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी थी। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या करेंगे आप, एड्रेस बार में लिखेंगे रेडियो फजा लाइव डॉट रेडियो फजा डॉट को डॉट यू के, और उसके बाद फिर मैं आपको सुनता हुआ कहता हुआ मिलूंगा। गुड मॉर्निंग नॉटिंगम। तो बताइए जी, कल का दिन कैसा गुजरा आपका? वीक तो स्टार्ट हो चुका है, अब मिड ऑफ द वीक आ चुका है। डेफिनेटली कुछ इच्छाएं, कुछ इरादे, कुछ ऐसी चीज़ें जो पेंडिंग रह जाती हैं इंसान से, इंसान कभी उनको जुटला भी नहीं पाता। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसान कोशिश करता रहता है कि मैं हमेशा समय के साथ भागूं, वक्त के साथ दौड़ूं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जनाब, ये विशेष टिप्पणी है मेरी। आज का जो टॉपिक है वो है जी वक्त, टाइम। सो अक्सर लोग कहते हैं, जो बड़े लोग फिर मेरी तरफ देखा ना आपने, या जब भी मैं बड़ा या स्याना का वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप लोग क्यों मेरी तरफ देखते हैं? कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा नहीं, नॉट दैट मच ओल्ड, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब हम सीनियर सिटीजन्स में आना शुरू हो गए हैं। एनी वे, थैंक यू वेरी मच जनाब जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया और हल्का सा उन्होंने मुझे मैसेज किया, स्माइली भेजी है, थैंक्स अलॉट। आप कौन है ये भी बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। जनाब, बात में ये कह रहा था कि वक्त कितना वक्त इम्पॉर्टेंट है, वक्त के साथ हमें क्या करना चाहिए, वक्त के साथ तब्दीली कैसे आती है, एनवायरमेंटल चेंज क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। लेकिन वक्त को ज़ाया करना कैसा है और किन तरीक़ों से आजकल के दौर में, आजकल के एरा में, और स्पेशली हमारे ये जो यूके का या इंग्लैंड का ये हमारे नॉटिंगहमशायर का जो एक कल्चर है, हम किस तरह अपने वक्त को, वैसे तो यहाँ पे हर बंदा बिजी है जनाब, तीन तीन शिफ्ट में काम कर रहा है जनाब, IRR के चक्कर में पड़े हुए हैं जनाब, उसके बाद होम ऑफिस कंप्लाइंस, HMRC, ब्लाबला, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। डेफिनेटली सिविलाइज सिटीजन है हम, और सिविलाइज मुआशरे से जब आप ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि हम अब भी जो मेरे एनालिसिस हैं उनमें हम किसी ना किसी जगह पे थोड़ा बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो जनाब, स्पॉन्टेनियसनेस के साथ ज़बरदस्त सा जवाब दीजिए और बताइए कि हम कहाँ कहाँ पे वक्त ज़ाया करते हैं। अगर आप भी इन विचारों के मालिक हैं, अगर आप भी अपनी कोई विशेष टिप्पणी रखते हैं तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिए 01157100971 पे। मीनवाइज जनाब, कुछ ही समय के बाद हमारे दरमियान हायल होने जा रही है कमर्शियल ब्रेक, लेकिन कमर्शियल ब्रेक से पहले मैं आपको बताऊंगा वेदर का सूरत हाल। जनाब, ज़बरदस्ती वेदर की सूरत हाल क्या है, इस वक्त कंडीशन क्या है और आज रात को क्या होने वाला है, हम बताएंगे ना सब कुछ आपको। सो स्टे ट्यून, एक मिनट के लिए जरा मैं आपसे वेदर रिपोर्ट डिस्कस कर लूं। तो ना, दिल तो चाह रहा था कि मैं हल्का सा भीगा हुआ हूँ, और भीगा भीगा सा ये दिसंबर नहीं बल्कि सितंबर है, ये ट्रैक भी चलाया जाए, लेकिन ये ट्रैक नहीं चलेगा जनाब। लाइट रेन एंड शॉवर्स एंड जेंटल ब्रीज, बिल्कुल जनाब। 18 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल 46%, और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जनाब शाम तक आपके पास 5 बजे तक बारिश रहने के कभी इम्कान है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, ये समझते हैं, ये समझते बूझते हुए आपके आज रात को क्या होने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब आज रात को टर्निंग लार्जली क्लाउड टुनाइट बट स्टेइंग ड्राई फॉर अ टाइम, अर्ली आवर्स विद डॉन अ फ्यू लाइट स्पॉट्स ऑफ रेन विल पुश इन फ्रॉम द वेस्ट, क्लियरिंग इन टू टुमारो मॉर्निंग। जी बिल्कुल, सुबह तक बिल्कुल मतलब जो है वो साफ हो जाएगा, अगर अलूट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, कोई ओरिएंटेशन है, या आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप बारिश लवर हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं बारिश जरूर मिलेगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 FM, इंजॉय कीजिए। थोड़ी देर के लिए बीजिए, एक कॉल भी है उसको भी लेते हैं, देखते हैं हो सकता है लाइव कॉल हो। वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंगम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंगम, मैं आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए। वेलकम वेलकम वेलकम जी, स्वागतम है। ये जनाब स्वागत किस लिए? स्वागतम है जनाब उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, या उन जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे वासी हैं नॉटिंगम शायर के, जिन्होंने इस वक्त चलते चलते हमें ट्यून अप किया। थैंक्स अलॉट फाखरा जी, द ग्रेट मेंटोर एंड ऑलवेज सपोर्टिव, अवेलेबल है उमर भाई, यू आर द ग्रेट, थैंक्स अलॉट एंड द बॉस एज वेल। थैंक्स अलॉट जनाब जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे। तंजो मजा तो हल्का हल्का साथ साथ चलता रहेगा जनाब। विशेष टिप्पणी आपको मैंने अपनी शेयर की थी, अपने विचार मैंने शेयर किए थे, आपकी सोच की धारा किस समय किस समत में बहती है, समय के साथ साथ वक्त के साथ साथ, ये है जनाब आज का टॉपिक और आप भी इस टॉपिक में मेरे साथ शामिल हैं। तो जनाब सबसे पहली बात, बड़ी ज़बरदस्त एक बात है जो अक्सर मैं आपके साथ करता नहीं हूँ क्योंकि टॉपिक आज का वक्त है, करने जा रहा हूँ। कहते हैं यार रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना है। क्या बात है जनाब, जबरदस्त कमाल यार, वेरी वेरी थैंकफुल टू जनाब, थैंक्स अलॉट जनाब जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया है और जबरदस्त तरीके से उन्होंने वेलकम किया है। जनाब आपको भी वार्म वेलकम है शो में। आई थिंक अब ना वो व्हाट्सएप पे बताया आपको नेम लिखा हुआ आता है तो मैं नाम पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन थैंक्स लॉट जिन्होंने भी नाम ये मुझे मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत ही कीमती बहुत ही ज़बरदस्ती बात आपने की। चलें इसी को लेके आगे चलते हैं जनाब वक्त के हवाले से, और आपको ये बता दें कि इंसान निराश कब होता है। दो चीज़ें आती हैं, अगर हम मोटिवेशन को लेकर चलें या फिर हम कुछ अपने विचार लेकर चलें। नेक्स्ट सेगमेंट्स जो हैं मेरे अगले पूरे घंटे के जो चंक्स में आपको बताया, एक तो हमारा फिजा हैक होता है, फिजा आइडिया जिसको आप बड़े शौक से सुनते हैं, आज का भी आइडिया देखेंगे, वक्त के हवाले से कुछ चीज़ ढूंढेंगे आपको बताएंगे, ढूंढ चुका हूँ वैसे ही आपके लिए, सस्पेंस डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद देखेंगे हमारे साथ आज की पर्सनैलिटी कौन सी होगी, पर्सनैलिटी ऑफ द डे। तो जनाब ये दो चीज़ें भी आपके पास मौजूद हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंगम में, अपने साथ रहिएगा लाजमी। उसके बाद ये मैं बता दूं आपको कि जितने भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कोशिश करनी होती है कहीं ना कहीं वक्त को बचाने की। अगर हम देखें ना कि हम किसी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो कुछ सियाने लोग अक्सर ये बात करते हैं कि यार एक साल जो है ना वो कम हो चुका है आपकी लाइफ से, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात ने दी है, जो ऊपर वाले ने हमें नवाजा है, जो ऊपर वाले ने हमें इतना ज़्यादा मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इंजाइल करना, उसके बाद ऑक्सीजन को इनहेल करना, और उसके बाद जनाब आप ये कह लें कि पूरा एक सिस्टमेटिकली जनाब जो निज़ाम है, जो मैग्नेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का, इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस पावर जिसको आप कुव्वत मुज़ाहमत कहते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बिल्ट इन है। एक कंप्लीट मशीन जिसको आप कह लें कि एक इंसान नुमा हस्ती इस दुनिया में रहती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसको अशरफुल मखलूकात यानी अक्ल जैसी नियामत भी अदा की है। ब्लेसिंग्स तो और भी बहुत हैं, ब्लेसिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो नियामत है वो हमारे पास अक्ल की है। ये वो सिफ्त है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हजरत इंसान को ऊपर वाले ने कहा था कि ये मेरा नायब है, ये मेरा खलीफा है, क्योंकि फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं, चरिंद परिंदे जहान में हर चीज़ उसकी इबादत के लिए मुख्तस कर दी गई है, इवन के 7 गैलेक्सीज में कोई भी जगह ऐसी नहीं जो उसकी इबादत से या उसकी अवेलेबिलिटी से महरूम रही हो, हर जगह पर इवन के हमारे शहर से ज़्यादा भी वो करीब है। अब सिचुएशन ये है कि हम जब अक्ल को नापते हैं या तोलते हैं या तराजू में रखते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ दुनियावी यानी मादी चीज़ें होती हैं, हम मैथ्स को देखते हैं बेसिकली, और देख के हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार इस बंदे ने अपना वक्त बहुत ज़्यादा सेव किया है या अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, अपने वक्त को सही यूटिलाइज़ किया, और यूटिलाइज़ करने के बाद इस बंदे ने इतनी ज़बरदस्त जनाब वोग इसने रखी हुई रेंज रोवर, इसके बाद इसका बहुत अच्छा घर है जनाब फ्लाइन जी में, जहाँ पे बंदा कोई सोच भी नहीं सकता घर लेने की फॉर एग्जांपल, या किसी और जगह पे भी रह रहे हैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी आपके कज़न रिलेटिव्स कहीं भी, तो हम इसको जज करते हैं जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे लेके। लेकिन कोशिश क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश हमें ये करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्ल ऊपर वाले ने दी है, अगर हम उसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी को जज करें तो देन यू आर नॉट अ जज। फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट आपकी आपके लिए नहीं हो सकती, आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से देखना, इंसान किस तरह कब किस पर्सनैलिटी में चला जाता है किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महापुरुष होते हैं, जिनको ना अक्सर बंदा देख के या सोच के या समझ के ये नहीं कह पाता कि यार इस बंदे के पास वक्त ज़ाया करने के लिए कुछ है। हर वक्त बिजी रहते हैं, लेकिन उनको किसी इस्तलाह में लुक बिजी एंड डू नथिंग वाली पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कम ये लोग होते हैं जो वक्त ज़ाया नहीं करते। हमारे बॉस या कोई भी आप ले लें, जब इनको मैसेज करें कि वी नीड सम अर्जेंट वर्क, सो जब आप वर्क के हवाले से बात करेंगे देन दे आर गोना रिप्लाई यू ओके आई एम अवेलेबल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको ना कोई बात करने का दिल करे, कोई मशवरा लेना हो, कोई एडवाइस लेनी हो, तो फिर उन लोगों के पास इस चीज़ का भी वक्त नहीं होता। वक्त ज़ाया करना, हमारे पास कहाँ से ऑप्शन आती हैं? हमारे पास ऑप्शन आती हैं हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे मोबाइल फ़ोन से। ये एक ऐसी चीज़ है जनाब जो कहीं ना कहीं हमारे पास काम में तो बहुत अच्छे तरीके से आती है। लेट्स से आप 25% से 50% 75% 80% तक आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं कि ठीक है जी ये आपके पास अवेलेबल है और आप इसे बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आपका बिजनेस इस पे चल रहा है, आपकी कॉल्स हैं, आपका वर्क है, आपका स्केड्यूल है, नोट्स है, वट एवर ईमेल्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ आप इससे ले रहे हैं और इसको दे रहे हैं आप, ठीक है। डेफिनेटली कायनात का रूल है, यूनिवर्स का रूल है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। अब सिचुएशन क्या बनती है कि हम डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे होते हैं? हम स्पेशली जब कोशिश करते हैं, टिकटॉक पे चला गया, लिंक्डइन पे चला गया, इंस्टा पे चला गया और उसके बाद हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं ना चाहते हुए भी। अब हमारा माइंडसेट हमें क्या कह रहा होता है कि यार तू 18 घंटे से बिजी है, तू 20 घंटे से बिजी है, अगर आधा पौना घंटा या एक घंटा तूने इसको स्क्रॉल करिए तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये जो आपका माइंडसेट आपको एक तसल्ली दे रहा है, वक्त ज़ाया करने की तरगीब दे रहा है कि आधा पौना घंटा या घंटा, तो हमारे माइंडसेट में आते हैं ना दो दो ढाई ढाई तीन तीन घंटे भी। मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, यकीन करें कि कल कोस्टा में एक बंदे से हमारी मुलाकात नहीं बल्कि मैंने जज किया उसको। आई विश के मैं वीडियो बना सकता लेकिन क्योंकि गैर अखलाकी मौजबाना तरीका नहीं है एक्स्ट्रा चुप के वीडियो बनाना। कुड यू बिलीव के कॉफ़ी मतलब आई थिंक ही ऑर्डर कैपेचिनो और समथिंग, बिल्कुल यकीन करें कि ऑलमोस्ट 45 to 50 minutes वो कॉफ़ी उसके टेबल पे पड़ी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद उसके जो फोम है वो भी काफ़ी हद तक बैठ चुका था, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ स्क्रॉल यानी अंगूठा ऊपर नीचे चल रहा है। मे बी ही इज़ वेरी बिजी कुछ कर रहे हो, लेकिन ये मेरा एक कॉन्सेप्ट आया था कि वहाँ से मैंने ये सोचा था कि कल का जो टॉपिक रखूँगा वक्त रखूँगा कि 45 मिनट्स हमने कुछ मीटिंग की, कुछ डिस्कशन की, कुछ क्लाइंट के साथ गपशप थी, कुछ एडवर्ट के हवाले से सब कुछ हो गया, लेकिन उन मोहतरम ने अपनी आँख तक नहीं चपकी। यहाँ से शुरू होता है बेसिकली हमारी ना चाहते हुए भी बर्बादी का सफ़र। लेकिन हम कैसे इसको सोच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने लोगों को सेव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास ना रहते हुए भी ना चाहते हुए भी बनती हैं, रुकती हैं। लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम उनको समझा नहीं पाते। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम इंसान को बहुत कुछ सिखाता भी है। जहाँ पे हम ज़ाया करते हैं ना टाइम, ये देखें ये एक ऐसी विशेष टिप्पणी है, ये एक ऐसी राय है, एक ऐसा विचार है जिससे आपने तो सोच लिया, मैंने भी सोच लिया कि यार टाइम इज़ अ मनी, ठीक है जी। टाइम हमें बचा भी रहा है, टाइम हमें बर्बाद भी कर रहा है, टाइम हमें डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रखने का मौका भी दे रहा है। वक्त हमें चांस ज़रूर देता है, लेकिन हमारे पास वो चांस लेने के लिए वक्त नहीं होता, वो वक्त हमारे पास हाथ से निकलता जाता है। और बिल्कुल ऐसे जैसे रेतनी जार में से निकलती है, अक्सर गेम्स में भी और पबजी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें होती थी जब किसी दौर में हम खेलते थे। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, लेकिन वो एक बात है कि ऐसे वक्त हमारे हाथ से ज़ाया, एक एक दिन कीमती है। और उसके बाद आपके पास जो टारगेट्स हैं, आपके पास जो अचीवमेंट्स के लिए जो गोल्स हैं, वो गोल्स आपके पास डिफरेंट तरीके से मैनेज करने के लिए भी वक्त नहीं। गोल्स आपको याद हैं लेकिन आपके पास मैनेजमेंट रियली वर्क नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। इवन मैं अपने आप को किसी दौर में बहुत अच्छा मैनेजर समझता था, लेकिन टाइम कहते हैं ना सर पता ही नहीं चलता टाइम, बिल्कुल नहीं। अभी यार 5 साल 7 साल 8 साल पहले 2 साल पहले हम अपने होमलैंड से अपनी कंट्री से इस जगह पे आए थे, इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में, और अब कंडीशन ये है कि हमें वक्त का नहीं पता चला। क्यों 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, कोई केयर की जॉब कर रहे हैं, फिर कैबी भी हैं भजन साथ, उसके बाद फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम भी कर रहे हैं, कोई पैकिंग फैक्ट्री में है, कोई सेल मैन है, ब्ला ब्ला ब्ला, हर जगह पर 2-2 3-3 शिफ्ट करने के बाद हम अभी तक अपने कर्ज उतार रहे हैं, हम अपने जात के कर्ज उतार रहे हैं पैसे की शक्ल में हर चीज़ की, और आगे बढ़ने की जो तगोदो है वो हमारे पास सिर्फ इतनी है कि हमने लाइसेंस लेके प्रोविजन नहीं लेके लाइसेंस, हमने गाड़ी लेनी है, उसकी एमआई पे करनी है, मॉर्गेज करनी है, उसके बाद अपने बच्चों को हमने ब्रिटिश लाइफ देनी है, या यहाँ पे अपने यूरोप में, यूएसए में, कहीं भी है अलगर्ज, हमने ये सोचा कि हम जो अपनी असलाफ, जो अपनी अकदार, जो अपनी सकाफत पीछे छोड़ के आए हैं, उस सकाफत ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें दी है, वक्त दी है, जो हम ज़ाया कर चुके हैं। अब इस दुनिया की जो स्पीड है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सेटल होना इट्स नॉट अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप ये जज कर लें कि आपके पास जो मनी है वो वक्त की सूरत में है या नहीं है। पैसा आपने बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया, आपसे हर जगह से पैसे आ रहे हैं, इनकम वापस आ रही है, आप यूज़ कर रहे हैं उसको, लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब आप ना चाहते हुए भी उन लोगों पे डिपेंड करते हैं जो लोग हमेशा आपके लॉसेस में रहते हैं, आपके नुकसान में रहते हैं, या ना चाहते हुए वो आपका नुकसान करते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी आपके बारे में इतना डीप सोचे कि वो आपको नुकसान दे। हाँ, मे भी ऊपर से, या आप कह लें कि कुदरत में अगर ऐसा कुछ है तो नादानी की वजह से लॉस हुआ या कुछ हुआ, तो आप उस व्यक्ति को, उस दोस्त को, उस रिलेटिव को उस वक्त समय के हवाले से दोषी करार दे देते हैं, आप जजमेंटल बन जाते हैं, आप जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि यार ये वक्त ही मेरा ना हो, फिर भी हो सकता है, लेकिन मौलाली का कोल है ना कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफ़ी होती है। अगर आप उनको दोबारा आजमाना चाहते हैं तो ये फिर आपकी ग्रेटनेस है, ये आपके ऑरा की वो पर्सनैलिटी, आपके ऑरा की वो चीज़ है कि जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग खुश होते हैं आपको देख के, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे मशवरा करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो आपसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बैठ के डिस्कशन करें कि बिजनेस मैनेजमेंट पर करें, किसी ख्यालाती मतलब तसव्वुराती दुनिया पर करें, किसी विजनरी सब्जेक्ट को लेके करें, या किसी मशीन को लेके चलें, फाइनेंस को लेके करें, अकाउंट्स को, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ इंसान के पास रहती है। फिर ऊपर वाला वक्त के साथ साथ हर इंसान को, हर व्यक्ति को ताकत देता है। वो ताकत क्या होती है? बात समझाने की। वो ताकत क्या होती है? बात सुनाने की। वो ताकत क्या होती है? बात को असर, जो बातों का असर है वो आपके दिल के अंदर, आपकी रूह तक पहुंचे तो फिर आप सुन सकते हैं, फिर आप सुना सकते हैं। और सुनना बहुत हिम्मत का काम होता है, बहुत बड़ा काम है सुनना। जमीन यकीन करें, आप जैसे मुझे सुनते हैं ना, मैं बीजीएम भी यूज़ नहीं करता, मुझे ट्रैक्स प्ले करने के भी याद नहीं आते। एनीवे जनाब, बेहद शुक्रिया आपकी समातों का, इतनी खूबसूरत अंदाज से आपने मेरी जो एक कंप्लीट लाइन थी उसको सुना। कुछ ट्रैक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्की फुल्की गपशप तो मैं करता रहता हूँ साथ साथ, और उस गपशप के साथ अब क्योंकि बारिश का भी मौसम है, कुछ लोग ड्राइव करते हुए भी सुन रहे हैं, और डेफिनेटली आप ये ना सोचें कि आप मुझे सुनते हुए अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बीजीएम मैंने चेंज कर दिया है जनाब, कुछ से ट्रैक हमारे पास है।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार, घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियां लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियां, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ।
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
0: एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के सेगमेंट के साथ आप तक पहुंचे, यही है हमारा लक्ष्य, यही है हमारा बेसिकली जो फोकस है, यही है हमारा वजदान। सो स्टे ट्यून, एंजॉय कीजिए ट्रैक्स को भी, और ठीक 5 मिनट या 7 मिनट के बाद मैं दोबारा आपको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा, अनाउंस करनी है ना कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून एंड योर होस्ट इज राइट हियर।

बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक कहा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, क्योंकि वक्त का टॉपिक है और वक्त भी रही है। एनीवे नाउ थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। ये 97.1 एफएम पे गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत शो अभी हमारे दरमियान हाइल होने जा रही। कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पार वापिस आएंगे। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सेगमेंट होगा पर्सनैलिटी ऑफ द डे। एंजॉय द कमर्शियल ब्रेक एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऐप पे जाने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल सर्च बार में, और फिर जनाब जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन वाइट पेज या येलो कलर में, डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। अगर तो आप अच्छी रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, ये अच्छा फोन है, तो फिर तो आप गोल्डन कलर में नजर आएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, और जब आप प्ले करेंगे तो गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में खूबसूरत सा आपका स्वागत करने वाला आपका मेजबान आसिफ खान रहेगा आपके साथ। तो जनाब बहुत शुक्रिया लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, आपको बताते चले live.radiofaza.co.uk इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का धमाका, एंटरटेनमेंट का सेगमेंट और इन तमाम चीजों का एक पूरा बंडल, पूरा पैकेज लिए आपके साथ आपका मेजबान मौजूद है। तो जनाब टॉपिक हमारा आज का वक्त है, मैसेजेस भी आ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे राब्ता करेंगे, लाइव कॉल्स भी इस नंबर पे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की लाइव कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में। ना वक्त के हवाले से अगर आपकी कोई विशेष टिप्पणी है, आपकी कोई राय है, आपकी कोई सोच है, आपके कोई विचार है, तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं बाकी लिसनर्स के साथ, बाकी जितने भी हमारे पुरुष हैं नॉटिंघम शायर से सुन रहे हैं या बाहर से सुन रहे हैं, उनको ये बता सकूं कि भाई फलां बंदा भी अच्छा सोच सकता है या खाली मेरा ही टेका नहीं है। एनीवे थैंक्स अ लॉट जनाब, जबरदस्ती एक चीज है। अब जो जैसा आप जानते हैं कि कुछ टाइम में बात करूंगा, उसके बाद हमारा जो सेगमेंट है वो है पर्सनैलिटी ऑफ द डे। लें जी सामीन, आपको जैसा बेहतर पता है कि पर्सनैलिटी में कौन सी पर्सनैलिटी होती है हमारे साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, जिन्होंने टाइम की कदर की है, जिन्होंने समय को ये समझा है कि ये बहुत ही कामयाब और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ऐसे लोग हम अपने अंदर शामिल करेंगे, पूछो तो जाने। आप मुझे बताएंगे कि आज की पर्सनैलिटी कौन सी हो सकती है। हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा जनाब, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग, इस चीज़ से इनका जनाब बहुत गहरा लगाव है, बहुत ज़बरदस्त लगाव है। साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं जनाब, ये हिंट इज मोर देन एनफ। बाकी बातें हम समय के साथ साथ करेंगे। तो जनाब एक छोटा सा मैसेज है बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे लिसनर्स हैं उनकी तरफ से, कि जनाब उन्होंने ये लिखा है, वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। अरे बेहद शुक्रिया जनाब, थैंक्स लॉट, आपने तो समस्या ही हल कर दी, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही प्यारी विशेष टिप्पणी, बहुत ही खूबसूरत विचार, बहुत ही प्यारी बात आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक्स लॉट। शायद अक्रम साहब हैं क्योंकि अक्सर ये ऑन एयर होते हैं लेकिन बहुत खामोशी से सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार मेरे तलफ्फुज ठीक करवाए हैं, मेरी हे नून काफ की नोक पलक बड़ी बार संवारी है, थैंक्स लॉट। अगर आप वही हैं, बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, थैंक्स लॉट। और जो भी हमारे साथ इस वक्त नॉटिंघम शहर से हमारे लिसनर्स मौजूद हैं, ये बात एक बार फिर से दोहराई देता हूँ, वक्त इतना आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ट्रैक से पहले काफी लंबी बात चली हमारी समय पे, वक्त पे, इसमें एक चीज ये भी है, ये पानी बड़ा वक्त को ना अगर हम लें कि बह रहा है, यानी चल रहा है, पानी की तरह बह रहा है, निकल रहा है हमारे हाथों से, तो एक वक्त ऐसा आता है सामीन कि जब हम इसमें डूब जाते हैं। वो बेसिकली वो डूबना नहीं है जो दरिया में या समुद्र में बंदा डूबता है या चुल्लू भर पानी में, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वक्त के समुद्र में डूबना बेसिकली वो गोता खोर, वो गोता लगाते हैं जो आजकल हमारे लेजेंड्स होते हैं, वो उसकी गहराई से जाके वो खूबसूरत मोती निकाल के लाते हैं, वो खूबसूरत जुगनू जो पानी के अंदर भी चमकते हैं, वो सलाहियतें लेके आते हैं, वो चीज़ें लेके आते हैं जिसकी वजह से हम आज उनके मरहूने मिन्नत होते हैं। दुनिया में जितनी भी आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें देख लें, आजकल का दौर देख लें, हम मॉडरेट होके रह रहे हैं, साफ सुथरे होके रह रहे हैं, सिविलाइज्ड मुआशरे में हम रहते हैं, ये सब ब्लेसिंग्स के साथ साथ उन लोगों की अंथक मेहनत भी है जिन्होंने वक्त के समुंदर में गोता जन हुए, जिन्होंने गोता लगाया और उन्होंने बताया कि भाई इसकी गहराई से आप क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अखज़ कर सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन इनके पास से मिल सकती है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के पास से मिलती हैं जो लोग हमेशा वक्त की कदर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और काम में अपने आप को मगन रखते हैं। मेरी अपनी एक राय है, छोटी सी राय ये है कि अगर आज से हम 20 साल या 25 साल पहले जाएं, या जो मेरी तरह

0: के जो लोग हैं जो 90 या 95 के बाद का जो दौर है, उस दौर में जो लोग आए हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो आज से 20-25 साल पहले जो बड़े हमारे लिसनर्स हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, लेकिन जो हमारे यंगस्टर हैं उनको ये चीज़ नहीं मिली। जिंदगी की लाइफ बहुत ज़्यादा तेज है, हमारे बच्चे है, हमारे फ्यूचर, हमारा अगली नस्ल या हमारी करंट नस्ल जब मार्केट में आएगी तो उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनके चैलेंजेस वक्त की एक एक सुई के साथ मैच करें, लेकिन हम अभी अगर ड्राइव करते हुए कुछ ना कुछ प्लान करें, बोल तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप ड्राइव करें तो बहुत ज़्यादा फोकस ड्राइविंग पे करें, कुछ भी मत सोचें। लेकिन अगर लॉन्ग ड्राइव पे मोटरवे जा रहे हैं या आप दूर दराज के इलाके में जा रहे हैं तो फिर उस वक्त को भी ज़ाया ना कीजिए। लोग अक्सर होते हैं ना, ट्रैक्स लगाते हैं, गाने सुनते हैं, 97.1 FM सुनेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट भी। तो उसमें होता कैसा, मैं उसमें होगा ये कि हम ये सोचेंगे ज़रूर कि अब ड्राइव में कर रहा हूँ, मैंने क्या प्लान करा है, मैं फ्लॉ मीटिंग पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हर चीज़ का हम प्लान करते हैं वक्त को मैनेज करके, वक्त के साथ साथ। लेकिन सबसे जो अचंभे की बात है, जो सबसे हैरानगी की बात है कि हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। कितनी कमाल की बात है कि हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। हर बंदा इस हर व्यक्ति इस चीज़ से बिल्कुल जनाब मेरे साथ एग्री करेगा और डेफिनेटली आप लोग एग्री करेंगे कि हम वक्त को पीछे छोड़ आते हैं, लेकिन हम हो सकता है कि इस दुनिया से भी उस पार निकल जाएं जहां वक्त बहुत तेज़ी से चलता है, जहां पे एक रात एक दिन 50,000 साल तक के बराबर होता है। और हो सकता है कि कुछ हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हुई हैं जब लोग इस बड़े दुनिया से, यानी एक बड़ी ज़ाया करने वाली वक्त की दुनिया से निकल के कारामत दुनिया में गए और कुछ टाइम के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वक्त बहुत तेज़ी से निकल गया था। जो उनके साथ के लोग थे वो बूढ़े होके मर भी चुके थे, लेकिन वो वापस आए तो फिर वो एक रवायात कह लें, आप स्टोरीज कह लें, सिर्फ और सिर्फ इंसान को सिखाने के लिए, या हकायात कह लें। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गवार हैं, जो बड़े हैं, ये लिखते हैं, ये लिखने के लिए बड़ी ताकत चाहिए होती है, बड़ा दिमाग चाहिए होता है, बड़ा विजन चाहिए होता है, ताकि हम कुछ ना कुछ कोशिश करके अपने आप को मैनेज कर सके। तो जनाब थैंक्स अलॉट वक्त पे इतनी विशेष टिप्पणी, इतने विचार मेरे सुनने के लिए। अगर आप भी देना चाहते हैं तो 1157100971 ये वो नंबर है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। व्हाट्सएप कीजिए या इस पे लाइव कॉल व्हाट्सएप पे भी आप हमें कर सकते हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, पर्सनैलिटी ऑफ द डे में रिवील करने लगा हूं जनाब आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है, बड़ी जबरदस्त सी, बहुत ही कमाल की। जैसा कि मैंने बताया कि साउथ एशिया से इनका ताल्लुक है, जनाब चाइना के एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी कमाल की पर्सनैलिटी जो इस वक्त ना अली बाबा को रन करें, क्या कमाल की जबरदस्त चीज इन्होंने बनाई, वट एवर। जनाब बड़े फेमस बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, और उसके साथ साथ यूएनओ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कई बार अपनी स्पीच से, अपने प्रोडक्ट से, अपने नॉलेज से लोगों को जनाब गरमा चुके हैं, उनको मोटिवेट कर चुके हैं। जनाब मेरी मुराद है जैक मा। तो एंजॉय कीजिए जबरदस्त मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी ऑफ जैक मा के, कैसे जनाब ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इतने बड़े बिलियनर बने, कामयाबी कैसे देखी, और अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए किन किन चीज़ों को इन्होंने छोड़ा, किन किन चीज़ों को अपनाया। स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM, एंजॉय कीजिए जबरदस्त सेगमेंट। योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर द सेगमेंट व्हिच इज पर्सनालिटी ऑफ द डे द ग्रेट जैक मा।
1: द को-फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप जैक मा टुडे इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन चाइना विद अ नेट वर्थ ऑफ $37.5 billion, बट ही स्टार्टेड हिज जर्नी वर्किंग फॉर $12 पर मंथ। So if you think you have it rough, just take a look at Jack Ma's success story. It will motivate you and inspire you to never give up, because you just can't beat the person who never gives up. Jack Ma was born in China and comes from a humble family. He always wanted to learn English, and as a kid, he spent his early mornings riding 70 miles on his bicycle for 9 years, giving English tours to foreigners for free. It was his way of practicing and learning English. In one of those tours, he met a foreign girl who gave him the nickname Jack because his Chinese name was hard to spell for her. Even from his early childhood, he faced hard times. He faced so many failures and rejections. Jack Ma failed in his primary school examinations 2 times. He failed three times during his middle school exams. He failed two times before he was accepted by what was considered the worst university in his city. He even applied to Harvard University 10 times and got rejected every single time. But that's not all. This was only during his education. Jack Ma was never a great student. He was always terrible at math, and actually he still is today. He failed in several subjects in school, but he possessed some kind of awareness that convinced him that being at the top of the class doesn't mean that you're intelligent or that you will ever be successful. He knew that there is more. Jack tried and failed to get a job after applying to them 30 times. When KFC came to China, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only guy who wasn't. He was also one of the 5 people who applied for a job in police force and was the only one getting rejected after being told, "No, you're no good." But when he was asked about his rejections, he said, "Well, I think we have to get used to it. We are not that good." After spending 3 years to get into a university, graduating with a bachelor's degree in English, he started working as an English teacher with a pay of only $12 per month. But he was never discouraged by any of this. The very important thing you should have is patience. And he did. In 1995, he had his first encounter with the internet when he went to US with his friends, and he was fascinated. He saw the lack of Chinese webs as an amazing business opportunity for him. So with no experience in coding or in computers, he founded an internet company for China. Unfortunately, his first two companies failed to succeed. But for the boy who failed his whole life, this was a starting point on his journey to success. So 4 years later, he gathered 17 of his friends in his apartment and convinced them to invest in his vision to create an online marketplace he called Alibaba. The main idea was that the site will allow exporters to post product listings that customers could buy directly. But the beginnings were really hard. In the beginning, I just wanted to survive. For the first 3 years, we made zero revenue. But soon, the service started to attract members and investors from all over the world. And the company has raised $5 million from Goldman Sachs and $20 million from SoftBank. Since then, Alibaba has become the biggest online marketplace in China and generates more profit than Amazon and eBay combined, and has turned Jack Ma into one of the richest people in the world. So don't let your humble beginnings, your level of education, your lack of resources stop you from pursuing your dreams. Because your success is determined by the amount of effort you put in. And most important, by not giving up when failure hits you. And it will hit you. If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Because if there is a man who knows the meaning of failure, it is Jack Ma. Before reaching his 30s, he felt like a failure all the time. He felt like a loser. But that didn't discourage him. On the contrary, he said, "I know this is a training course for me." He looked at every challenge in his life like an opportunity. Jack Ma never thought in his life that he will be a businessman. He never thought he would be a teacher. And most certainly, he never thought he would become one of the richest people in the world. But at some point in his life, he was all of those people. On the opposite, there were other things he wanted to do, like he wanted to be a policeman and he wanted to work at KFC, but ended being the only one who got rejected. And it looks like those rejections and failures were for his own good. So don't be afraid of your failures. Once in your life, try something, work hard at something, try to change. Nothing bad can happen. And remember, never give up. Today's hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. So, what's your story?
0: Wow! वाओ जी। तो लिसनर्स वेलकम बैक, ये थी जनाब जबरदस्त इनक्रेडिबल सी स्टोरी द ग्रेट जैक मा की। और अब मुझे लगता है कि हर बंदा ना बड़ा जबरदस्त मोटिवेट, मैं तो इतना जबरदस्त मोटिवेट हो चुका हूँ कि बस आज के दिन ना वो कहते हैं ना तबाहियाँ फेर देनी जनाब। एनीवे जोक्स अपार्ट जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर एक चीज़ नोट करता हूँ, एक चीज़ हर वीडियो में से या कोई भी ऑडियो जो मैसेज आप तक पहुँचता है या जो भी पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी ऑफ टीम, बेसिकली क्या पैगाम होता है, बेसिकली सामने यही पैगाम होता है कि हमने कभी भी फेलियर्स को अपनी ढाल नहीं बनाना, कभी भी नहीं सोचना कि हम नाकाम हो चुके हैं। नए नए टारगेट्स आते हैं, नई नई अचीवमेंट्स आपको मिलती हैं, आप उनको विन करते हैं, और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं जैसी देखी जा रही होती हैं। कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, कैमरे की आंख भी धोखा खाती है। इंसान बेसिकली कर कुछ और रहा होता है, नज़र कुछ और आ रहा होता है, क्योंकि माइंडसेट बिजी रहता है। जनाब ऐसी कुछ स्टोरी थी हमारे जैक मा की, इनका भी माइंडसेट बिजी था, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और रहा था, और कभी भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि ईबे या अमेज़न के लेवल पर ये बंदा कम्पीट करेगा। एक ज़बरदस्त सा व्यक्ति जिसको अनपढ़ होने के साथ साथ इंग्लिश भी नहीं आती, और टूरिस्ट के साथ साथ यानी गाइडर के साथ अपना एक करियर शुरू किया, और उसके बाद अपने करियर को कहाँ तक पहुँचाया, किस जगह तक पहुँचाया, ये सारी चीज़ें इस ज़बरदस्ती सेगमेंट में यानी पर्सनैलिटी ऑफ द डे में आपने मुलाहिजा की। तो जनाब इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, और इसका जो फाइनल फ्रेज है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ कि आपके पास कामयाबी आती है। यानी अगर आज का दिन आपका बुरा है, कल का दिन मजीद बुरा होगा, परसों का दिन मजीद बुरा होगा, लेकिन
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ,
5: भंगड़े पाओ,
6: भंगड़े पाओ,
7: भंगड़े पाओ।
8: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
8: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
8: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
8: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
8: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
9: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

अंडरस्टैंड करने की किसी चीज़ को, किसी चीज़ को समझने की, वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। फिर अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी रेजिस्टेंस पावर यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है, आप ऐसे इकदाम करें, आप ऐसे कदम लें, आप ऐसा कुछ करें। और फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ मेडिकेशन भी होती है। ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं कि आप स्टार्ट में अपनी समझ को कहाँ तक लेके जाते हैं, आप किस तरह अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करते हैं। क्या आपकी सोच, क्या आपके विचार वक्त के साथ बह रहे हैं, क्या आपके विचार टाइम के साथ मूव कर रहे हैं, यानी इसलिए अपने आप अपने विचारों को मॉडरेट करना, थोड़ा सा ग्रो अप करना माइंडसेट के लिए बेहद ज़रूरी है।

जनाब वक्त के साथ साथ वक्त जाया मत कीजिए, वक्त की इम्पोर्टेंस हमेशा आपके पास रहेगी। इसके अलावा जो माइंडसेट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने मॉडर्न एरा के साथ अपने आप को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको स्टडी करनी पड़ती है। जो अक्सर मैं बात कर रहा था ना कि शुरू में जो हम वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया कैसे करते हैं कि हम मोबाइल हाथ में लेके स्क्रॉल करते हैं, तो उस वक्त फिर आप स्टडी करें। कुछ लोग हैं, आई नो वेरी वेल सम पर्सनैलिटीज, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं हमारे इस एरिया में, नॉटिंघम स्पेशली, जो स्पेशली सर्च करते हैं, रिसर्च में हमेशा रहते हैं, गूगल को देखेंगे या एक नई चीज़ों को देखेंगे, मोटिवेट रहेंगे और अपने आप को आगे लेके जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते रहिए। मैंने तो एक दो बंदे देख लिए, आप कार्ड में रखे हैं, आप लोग भी रखिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना, स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 FM, योर होस्ट इज राइट हियर। लेकिन अभी हमारे दरमियान हाइल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, खूबसूरती कमर्शियल ब्रेक के उस पार दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। जनाब सेगमेंट होगा फजा आइडिया का, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी 5, 7, 8, 10 ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसलिए स्टे ट्यून, एंजॉय कीजिए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजाना 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर मैं आपके साथ आपका मेजबान कुछ ट्रैक्स आपके सामने दोबारा रखे गए कोश गुजार किए गए बेसिकली आपकी समाधों की नजर किए गए ताकि कुछ साहिबान कुछ हजरात कुछ व्यक्ति और कुछ पुरुष इन चीजों को एंजॉय कर सकें। हमारे नॉर्गम शहर के जितनी भी पर्सनैलिटीज इस वक्त हमें सुन रही हैं आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब जबरदस्त सा हैक था फजा आइडिया का कि पांच चीजें कैसी हैं कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकती हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को आपने अवॉइड करना है, उसके बाद अच्छे से प्लांट्स अपने इर्द गिर्द रखिए जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन अनायत करें, और उसके बाद आप उनसे भी आप कुछ एनर्जी ले सकें। उसके बाद पॉजिटिव लोगों से मिलिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को स्माइल देके गुजरते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया सुबह का भी वक्त था, वो भी मैंने आपको बताया कि कितने खूबसूरत अंदाज में वो जो बुजुर्ग हैं वो जो अंकल हैं वो मुझे स्माइल करते हैं बड़े प्यारे अंदाज में। आज दो वीक्स के मुसलसल काविशों के बाद आज हम दोनों ने एक ही वक्त पे सेम टू सेम स्माइल पास की है। तो ये जो कनेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा आपको स्वस्थ करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं जिंदगी में मजीद आगे बढ़ने के लिए। और उसके साथ ट्रैश अपने आगे पीछे बिल्कुल भी ना रखिए, अगर आपकी डस्टबिन ऑफिस की भर चुकी है तो उसको खाली कीजिए। और उसके बाद सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, अपने डे को प्लान कीजिए। डे को प्लान करने के साथ साथ आप अपना वक्त जाया होने से भी बचा सकते हैं। तो जनाब वक्त का आज का हमारा टॉपिक था, ये विशेष टिप्पणी थी, लेकिन अब कुछ ट्रैक्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखे देता हूं। आप एंजॉय करेंगे इन ट्रैक्स को। ट्रैक्स के उस पार मैं आपके साथ नहीं रहूंगा क्योंकि हाइल होगी खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक। बिल्कुल जनाब धीरे से मत आए, तेजी से आए जिंदगी में क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी होने का नाटक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा किसी चीज में खोए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि जनाब ये ड्रामे मत कीजिए। जिनको मैं कहना चाहता हूँ वो समझिए, हाई रेटेड गबरू जितने भी हैं ना वो सारे मर गए हैं क्योंकि इतने सख्त कवानीन आ रहे हैं, गेहूं वापस के कंप्लायंस पूरे करने हैं आपने। एनीवे नाउ जोक्स अपार्ट, नॉटिंघम के जितने भी वासी हैं उन सब के लिए बेहद खूबसूरत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के साथ गुजारेगा क्योंकि रहना है आपने ट्यून अप विद फजा 97.1 एफएम। So, stay tuned, stay positive, stay energetic with Faza 97.1 FM and app. Right now, you have to say goodbye. अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए इजाजत। कल जनाब नई एनर्जी के साथ, नई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ, नए सब्जेक्ट, नए सवालात, नए टॉपिक के साथ रहेगी आपसे फिर से मुलाकात ठीक 8 से 10 इन द मॉर्निंग इन वन एंड ओनली शो विच इज गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। हियर यू गो, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय नॉटिंघम।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

कीजिए। जिनको मैं कहना चाहता हूँ वो समझ गए। हाई रेटेड गबरू जितने भी है ना वो सारे मर गए हैं, क्योंकि इतने सख्त कबार नींद आ रहे हैं, गेहूं वापिस के कंप्लायंस पूरे करने हैं आपने। एनीवे अब जोक्स अपार्ट, नॉटिंघम के जितने भी वासी हैं उन सब के लिए बेहद खूबसूरत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के साथ गुजारेगा, क्योंकि रहना है आपने ट्यून अप विद फजा 97.1 एफएम। So stay tuned, stay positive, stay energetic with Faza 97.1 FM and app. Right now, you have to say goodbye. Apne mezban Nasir Khan ko dijiye ijazat. Kal janab nayi energy ke saath, nayi full of confidence energy ke saath, naye subject, naye sawalat, naye topic ke saath rahegi aapse phir se mulaqat. Theek 8 se 10 in the morning. In one and only show, which is Good Morning Nottingham. Here you go. Goodbye, goodbye, goodbye, Nottingham.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: You are listening.
1: Assalamu alaikum, namaste, satsyakar, hello, a very beautiful, exciting, plus charming morning, aap sabhi listeners ke liye. Chido listeners, main hoon aap sabhi ki host, aap sabhi ki dost, RJ Zainab Fatma, aur aap sabhi sun rahe hain aapka apna pasandida program, Diva Dialogue. तो क्यों ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे. और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM दैट ब्रिंग्स लाइव एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इन योर लाइफ. सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी गपशप और फिर साथ ही साथ म्यूजिक का और इंटरटेनमेंट का सिलसिला जो कि आपका और मेरा साथ में चलता रहेगा अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी कि ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहने वाले हैं साथ साथ और मिलकर करेंगे बहुत सारी बातें. सो वेल लिसनर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे हैं आप सब. उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे और अभी तक इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर चुके होंगे. वेल, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज हम और आप एक साथ. सबसे पहले बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने वाले हैं और आज क्या करने का इरादा रखते हैं. सो इस हवाले से आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं. क्योंकि ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहने वाले हैं साथ साथ. सो ये गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा. सो मज़ा तभी आता है जब आप भी हमसे उतनी ही गपशप करते हैं जितनी गपशप हम आपसे करते हैं. सो जब आप हमसे शेयर करते हैं आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन, डिफरेंट चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव, तो बहुत अच्छा लगता है. साथ ही साथ जब कॉन्वर्सेशन टू साइडेड होती है तो कभी कभार वक्त का पता ही नहीं चलता. और जैसा कि आपको मालूम है कि डीवा डायलॉग ना सिर्फ मेरा प्रोग्राम है बल्कि है आप सभी का प्रोग्राम. सो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा सकते हैं और आप हमें अपना फीडबैक बता सकते हैं. सो उसके लिए आपको 01157100971 हमारा ये जो सिंपल सा छोटा सा नंबर है इसे कर लेना होगा सेव. सेव करने के बाद आप इस नंबर के थ्रू हमसे कर सकते हैं वो तमाम तरह बातें जो आप करना चाहते हैं किसी भी शख्स से, किसी इंसान से, या फिर आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने, आपको समझे और आपको कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दे. तो इन तमाम तरह चीज़ों के लिए, इन तमाम तरह बातों के लिए आपको बस सिंपली इस नंबर को करना होगा सेव. सो वेल लिसनर्स, ना सिर्फ ये एक नंबर है बल्कि ये एक ऐसा रास्ता क्रिएट करता है जो आपको हमसे और हमें आपसे मिलाता है. सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, प्रोग्राम में क्या चीज़ ऐड की जाए, क्या चीज़ रिमूव की जाए. साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक सुनने हैं और आप अगर चाहें तो आप अपने किसी चाहने वाले को कोई भी प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट कर सकते हैं. सो वेल लिसनर्स, इन तमाम तरह बातों के लिए ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर. सो अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरह से मुझे यानी कि रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून कर सकते हैं. सो वेल लिसनर्स, आप हमें लाइव ट्यून करने के लिए radiofaza.co.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं. ये ना सिर्फ एक वेबसाइट है बल्कि है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का सोर्स. सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप जान सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड हर तरह की मालूमात. सो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ है दमदार या फिर आप अपनी आवाज़ का जादू जगा सकते हैं, सो आप हमारी ऑफिशियल टीम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आप भी मेरी तरह आरजे बन सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको किसी भी दीगर चीज़ों से मुतलिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हर तरह की मालूमात मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे. और लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिले जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के हमें स्मूथली ट्यून कर सके, सो उसके लिए आपको करना होगा हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल. सो सिंपल सा तरीका है, आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो सिंपली आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM. और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आने वाली पहली एप्लीकेशन जिसका आइकन है पर्पल कलर का, जी हाँ बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन. सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो वेल लिसनर्स एंड माई लवली डिवास, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं. सो एक एक करके मैंने आपसे शेयर कर दिया. वेल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हम तक पहुंचते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं. सो वेल लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का जखीरा है मेरे पास आप सभी के लिए. सो वो भी आपसे शेयर की जाएगी, आज के टॉपिक के हवाले से भी होगी गपशप. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं एक खूबसूरत से प्यार से ट्रैक के साथ. सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात. सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM.

0: अगर इन पहाड़ों को कोई पार करता चला जाए तो यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूसिया होते हुए बुल्गारिया के उस छोटे से गांव तक पहुंचा जा सकता है जहाँ उल्का नाम की लड़की का घर है। तुम चलो ना मेरे साथ बुल्गारिया।
1: शिवा हिमालय के सिवा कहीं और जी नहीं पाएगा।
0: सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तुम बुल्गारिया नहीं आ सकते, मैं यहां नहीं रह सकती।
1: मुलाकातों को दिनों हफ्तों से क्यों गिना जाता है, सांसों से क्यों नहीं? अगर सांसों से गिना जाए तो लगेगा बहुत लंबी उम्र है, इस कम उम्र रिश्ते।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। वेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि ठीक इसी तरह से आपके पसंदीदा ट्रैक्स को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए तो उसके लिए आप हमें बता सकते हैं। सो साथ ही साथ बातचीत करते हैं। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का बाकायदा तौर पर आगाज कर लिया होगा। सो हमारे वो तमाम तर लिसनर्स जो कि इस वक्त घरों से बाहर निकल चुके हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस की तरफ हैं रवा दवा, सो अगर आप भी इस वक्त घर से बाहर निकल चुके हैं मौजूद, ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं, सो वेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र बन जाए मज़ीद खूबसूरत खूबसूरत यादों के संग, खूबसूरत बातों के संग और खूबसूरत ट्रैक्स के संग, सो आप इस सफ़र को खूबसूरत बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 87.1 FM के संग। सो डियर लिसनर्स, आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं और वहां पर हमारा साथ दे सकते हैं। सो बनाइए इस सफर को और अपनी डेस्टिनेशन को खूबसूरत, यादगार और मेमोरेबल, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। साथ ही साथ वो हमारे तमाम तरह लिसनर्स जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते हमें ट्यून कर रहे हैं, आप सबके लिए है एक बहुत ही हमदर्दाना सी एडवाइस के बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कोशिश यही किया करें कि आप सारा फोकस ड्राइविंग पे रखें, इधर उधर की आगे पीछे की बातों को दिमाग से निकाल दें और अपने माइंड को किसी भी जानिब डाइवर्ट ना होने दें। सो वेल लिसनर्स, आज के डिवा डायलॉग का ये सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। सो डियर लिसनर्स, ये टॉपिक भी हमें हमारे लिसनर्स ने ही रिकमेंड किया है। सो उसके हवाले से आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आज थर्सडे है तो थर्सडे एक ऐसा दिन होता है जो कि साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए हैप्पीनेस लेकर आता है, क्योंकि इट्स अ साइन, इट्स अ रिमाइंडर कि अब वीकेंड है बेहद करीब। और आई नो जैसे ही हमारी टीवी सुनते हैं कि वीकेंड अब आने वाला है, सो साथ ही साथ उनका फोकस जाता है एक ही चीज़ के ऊपर, वो है हेल्थ केयर, स्किन केयर या फिर ओवरऑल उनकी बॉडी केयर। सो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है हमारा आज का टॉपिक भी। सो आज हम बात करेंगे हेल्दी बाउंड्रीज की। हेल्दी बाउंड्रीज का सिंपल मतलब क्या होता है और हेल्दी बाउंड्रीज क्यों बनाना ज़रूरी है, सो इसके ऊपर हम करेंगे डिटेल डिस्कशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। सो इसी के लिए आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। फिलहाल अभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है, तो इस ट्रैक को हम प्ले करते हैं और ट्रैक के उस पार आपसे आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।

0: ठीक है तो लिसनर्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जो कि आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी बाउंड्रीज। सो बेसिकली आप सब सोच रहे होंगे कि हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। हेल्दी बाउंड्रीज का सिंपली मतलब ये होता है कि वो तमाम द चीज़ें जो आपको ठीक लगती हैं आपके लिए ठीक हैं, एंड ऑन द सेम साइड ऑन द अदर हैंड वो तमाम तरह चीज़ें जो आपको खुद के लिए ठीक नहीं लगती, और आप किस तरह से किसी दूसरे को रिस्पेक्टफुली ये बात समझा सके कि यू डू समथिंग बट आई एम नॉट ओके विथ दिस। सो इसे कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में हेल्दी बाउंड्रीज, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्रीज मुकर्रर करें जहाँ आप दूसरे लोगों को बता सके कि ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, ये चीज़ मेरे लिए ओके है, और ये चीज़ मेरे लिए ओके नहीं है। विदाउट इसके कि आप ये सोचें कि अगर मैं ऐसा कहूँगा या मैं ऐसे कहूँगी तो किसी दूसरे को बुरा लगेगा। सो इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अब ज़रा इसके ओरिजिनल मीनिंग को समझते हैं। सो बेसिकली बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं, बाउंड्रीज का मतलब कभी भी सेल्फिश होना नहीं होता, लेकिन बाउंड्रीज का मतलब ये भी नहीं कि आप लोगों से डिस्टेंस बना लें। एक्चुअल हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है रिस्पेक्ट दूसरों की भी और आपकी खुद की भी। कभी आपने नोटिस किया है कि हम किसी को नो कहना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस डर से यस कह देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। कभी हम किसी की कोई भी प्रॉब्लम अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं तो कभी कोई बार बार हमारे पर्सनल टाइम को डिस्टर्ब करता चला जाता है, बट स्टिल हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मे बी अगर हमने इसे मना किया तो इसे बुरा फील होगा। कभी कोई हमारी प्राइवेट बातें दूसरों के सामने डिस्कस करता है और हम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं कि रिलेशनशिप खराब ना हो। यहाँ से बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस समझना बेहद ज़रूरी है और यहीं से ही आपकी बाउंड्री स्टार्ट होती हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाउंड्री एक्चुअली होती क्या है। सो ये तो हमने बात कर ली कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्रीज को मुकर्रर करें जिसमें आप दूसरों को समझा सके, बता सके कि देयर आर द सर्टेन थिंग्स जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं आपको मना नहीं कर पा रहा, बट स्टिल आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए इस चीज़ को। दिस अब हम बात करते हैं कि बाउंड्री एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे मैं क्लियर कर देती हूँ। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते। हेल्दी बाउंड्री ज़्यादातर इस फॉर्म में होती हैं, अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं क्या करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बार बार आपको लेट नाइट कॉल करता है और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड के अगर कोई ऐसी चीज़ है जो, मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ग्रुप में आपका कोई फ्रेंड आपको बुली करता है या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट वो कोई ऐसी बात कर देता है जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, बट आप दिल में सोचते हो कि जस्ट इन केस अगर मैं इसे मना करूँगी या करूँगा तो मे बी ये मेरा फ्रेंड है, इसे बुरा लगेगा, लेकिन आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। सो इस तरह के सिचुएशंस पे यू नीड टू फोकस ऑन योर बाउंड्रीज, क्योंकि जब आप खुद की बाउंड्रीज को खुद समझेंगे तभी आप दूसरों को समझा सकते हैं कि यू नो तुमने ये बात की है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ ना करो। तो इसी को कहते हैं बाउंड्री। अगर कोई आप पर फेवर रिपीटली इम्पोज करे सो आप सिंपली उसको मना कर सकते हैं। हर बाउंड्री के पीछे लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देना कभी भी ज़रूरी नहीं होता। सो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर फुल डिटेल डिस्कशन होगी। सो अब आगे बात करते हैं कि जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी से भी रिलेट करती है कि अक्सर औकात ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में किसी को मना नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वाई इज सेइंग नो इज सो डिफ़िकल्ट। कई दफ़ा हम लोगों को डिसअपॉइंट करने से डरते हैं, हमें लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो मे बी वो मुझे सेल्फिश समझेगा, अगर मैंने अपनी ओपिनियन बता दी तो हो सकता है कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें, आपका नो किसी और के लिए इनकन्वीनियंस तो हो सकता है लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग हैं। आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते, आप हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकते, और कभी कभार ज़रूरी नहीं कि आप हर रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करें। एंड ऑनेस्टली अगर किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप हमेशा उसके लिए यस कहें तो वो बिल्कुल भी एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है और वो बिल्कुल भी एक हेल्दी रिलेशन नहीं है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी भी अगर रिलेशनशिप पे हैं, किसी फ्रेंडशिप पे हैं या फिर किसी भी बॉन्ड में है, सो द अदर पर्सन कैन रिस्पेक्ट ऑन योर बाउंड्रीज। अगर तो वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहा है देन ओके, और अगर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, अगर आप किसी चीज़ से मना करते हैं उस चीज़ को समझ रहा है, देन इट्स ओके. वेल, ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त हमेशा दूसरों की गुड बुक्स में रहने की कोशिश करें. सो ये होगी हमारी बातचीत की क्यों नो कहना हमेशा मुश्किल होता है. इसलिए क्योंकि हम बस डरते हैं कि हम जिन लोगों के बेहद क्लोज हैं कहीं उनको बुरा ना लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और हम खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं. सो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी. साथ ही साथ आपका भी ओपिनियन लेंगे कि आपका इस हवाले से क्या कहना है, क्या आपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपके हवाले से हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं. लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, चलते हैं अभी इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापसी पर हम दोबारा से इसे कंटिन्यू करेंगे और आपका भी फीडबैक शामिल करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 एफएम एंड वी विल बी.
1: इट्स कमर्शियल टाइम.
2: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदीद। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो क्यों नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजलनिटी 7.1 एफएम पे। सो वेल लिसनर्स, हमारे वो तमाम सारे लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, सो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आप हमें क्या करते करते ट्यून कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से बताना है, तो आप सभी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0115710971 है हमारा सिंपल सा छोटा सा प्यार सा नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप हमें ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि आप हमें अपनी दास्तान भी सुना सकते हैं। सो अब से बात कर लेते हैं दोबारा से हमारे आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज सिंपली मींस कि आप दूसरों को समझा सके कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, और साथ ही साथ कि वो तमाम तरह लोग जो आपके करीबी हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, वो उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है, तो आइए मिलकर सुनते हैं ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला चलता रहेगा।

सो चलिए इस तरह बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज. सो हेल्दी बाउंड्रीज सिर्फ और सिर्फ किसी भी रिलेशनशिप पे नहीं होती, बल्कि आपकी अमली ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जहां आपको कुछ हदूद मुकर्रर करना ज़रूरी होता है. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमोशनल बाउंड्रीज की. सो इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को समझें, लेकिन उनके हर इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर कभी भी मत लें. आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के हर प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते. सो अगर आपको ऐसा लगता है या आप कह सकते हैं मुझे तुम्हारी बात सुनने की समझ आ रही है लेकिन शायद इसका सोल्यूशन मेरे पास मौजूद नहीं है, सो दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी एंड दिस इज़ कॉल्ड द इमोशनल बाउंड्रीज. सो हमेशा आप कोशिश यही करें कि आपके आसपास इर्द गिर्द आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग मौजूद हैं आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट करें, लेकिन अगर वो इमोशनली डैमेज हो रहे हैं तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि इट्स नॉट योर फॉल्ट. सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुछ बाउंड्रीज को मुकर्रर करें और आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब आप खुद उनका ख्याल रखेंगे तो तभी दूसरे लोग भी उनको रिस्पेक्ट करेंगे. अब बात कर लेते हैं फिज़िकल बाउंड्रीज की. तो हर पर्सन का एक पर्सनल स्पेस होता है, किसी को भी आप किसी की बिलोंगिंग के साथ डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो इस चीज़ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है और ये तमाम चीज़ें बेसिक रिस्पेक्ट में आ जाती हैं. और रिस्पेक्ट का बेसिक रूल यही है कि आस्क बिफोर क्रॉसिंग समवंस पर्सनल स्पेस. अब बात करते हैं टाइम बाउंड्रीज की. आपका टाइम भी बेहद वैल्यूएबल होता है. सो आपको हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई करना कभी ज़रूरी नहीं होता, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी नहीं होता, साथ ही साथ आपको खुद के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है. सो बाज़ुकात लोग क्या करते हैं, जस्ट दूसरों को खुश करने के लिए वो अपना कीमती वक्त दूसरों पर वेस्ट करते हैं. सो हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, के आपका टाइम, आपका डोमेन, आपकी एनर्जी बेहद इंपॉर्टेंट है. सो हमेशा कोशिश किया करें कि आप अपना टाइम सिर्फ उसी जगह दें, उन्हीं लोगों को दें जो आपको समझें, आपको अंडरस्टैंड करें और आपकी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखें. सो इस हवाले से अगर आपको कोई ऐसा शख्स इनवाइट करता है किसी गैदरिंग में, या फिर आपको लगता है कि वो लोग आपको पसंद नहीं करते, सो आप कभी भी उस जगह मत जाएं जहां आपको प्रॉपरली इनवाइट ना किया गया हो, जहां आपको वैल्यू ना किया गया हो. अब से बात कर लेते हैं डिजिटल बाउंड्रीज की. सो आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का इरा है, सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर किसी को आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ से मुतलिक चीज़ें मत बताएं, क्योंकि आई नो आजकल सोशल मीडिया है तो लोग क्या करते हैं, अपनी तमाम तरह चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं जिसमें उनकी सक्सेस, उनकी फेलियर और भी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो कोशिश आप यही किया करें कि आप अपनी जो तमाम तरह चीज़ें हैं, जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, आप उनको मेक श्योर करें कि आप उन्हें कभी भी सोशल मीडिया पर मत शेयर करें, क्योंकि पीपल रियन थिंग्स जो वो लोग जानते होते हैं. सो जो चीज़ें आप शेयर करते हैं वही डैमेज होने का खतरा होता है. सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करें, सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया को एहतियात से इस्तेमाल करें और वहाँ पर भी अपनी कुछ बाउंड्रीज मुकर्रर करें. और सबसे ज़रूरी ये है कि बीइंग कनेक्टेड ऑनलाइन डजंट मीन समवन इज़ एंटाइटल्ड टू अनलिमिटेड एक्सेस टू

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदीद। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजल 97.1 FM पे। सो वेल लिसनर्स, आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा मुकम्मल। कैन यू बिलीव इट कि हमें आपस में डिस्कस करते हुए, गुफ्तगू करते हुए एक घंटा हो चुका है मुकम्मल। सो वेल लिसनर्स, अभी कमर्शियल ब्रेक में मैं आप सबका फीडबैक पढ़ रही थी। सो आपने भी मुझसे अपने डिफरेंट तरह के ओपिनियन शेयर किए, आइए वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो हमारी एक लिसनर ने हमें एक स्टोरी बताई है, ठीक है, सो जो कि बेहद रिलेटेबल है। एंड आई थिंक सो कि आजकल की सोसाइटी में ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो शी सिंपली सेज कि जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो एट फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुआ करती थी। वो सबसे बातचीत करती थी, सबको वैल्यू करती थी और मेक श्योर करती थी कि उनके आसपास की जितनी भी कम्युनिटी है वो हमेशा उनसे खुश रहे और कभी भी किसी को ना वगैरह नहीं करती थी। बट बाय द टाइम शी रियलाइज्ड कि लोग उनको सीरियस नहीं लेते, लोग उनको वैल्यू नहीं करते और ऐसा समझते हैं कि इस शख्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं। सो फाइनली शी रियलाइज शी चेंज्ड हरसेल्फ एंड बिकम अ सीरियस पर्सन, एंड नाउ एवरीवन रिस्पेक्ट हर टाइम, रिस्पेक्ट हर इमोशंस। सो ये स्टोरी आजकल आई थिंक सो मोस्टली लोग इससे रिलेट करेंगे। सो जब मैंने उनका फीडबैक पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये थोड़ी सी कॉमन स्टोरी है तो मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सो ऐसा होता है कि जब आप सबका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर वक़्त लोग समझ लेते हैं कि आप तो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, सो वो आपको वैल्यू नहीं करते। वो समझते हैं कि ये तो हमेशा यही है, इससे कौन सा कहीं पर जाना है। लेकिन जब आप खुद को खुद वैल्यू करते हैं, सो सिंपल से रूल हैं, अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपको लगता है कि If he and she is interested in talking to you, so आप दोबारा उससे मिलें और कभी भी कोई भी relationship one-sided ना रखें। So one-sided relationship हमेशा वही होता है जहाँ आप efforts put करते हैं, आप दूसरे के लिए comfort plan करते हैं, लेकिन दूसरा शख्स आपके लिए कभी भी comfort plan नहीं करता। वो आपको उस तरह से नहीं देखता, आपको उस तरह से नहीं सोचता। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। वेल, उम्मीद तो यही है कि आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो माय लवली डिवस, अभी रीवा डायलॉग में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का, विच इज कॉल्ड द स्पाइस किचन, जहाँ हर दिन हम बात करते हैं कुछ मुनफरद, कुछ अलग, कुछ चटपटे तीखे खानों की। वेल, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स के लिए मैं डेली बेसिस पर ऐसी रेसिपीज लेकर आऊँ जो बहुत सिंपल हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप तो कुछ अलग, कुछ मुनफरद ट्राई करें लेकिन सिंपल अंदाज में, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, ताकि आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की भी दिक्कत ना हो। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ कुछ इसी तरह की ही रेसिपीज। सो आपसे शेयर करते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में एक फरमाइश शामिल करते हैं जो कि हमारे लिसनर ने रिकमेंड की है, उन्होंने सजेस्ट की है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम अपने लिसनर्स को कभी भी निराश ना करें। सो ये एक ट्रैक है, ट्रैक इंग्लिश है, सो प्ले कर देते हैं आप सभी के लिए। आइए मिलकर सुनते हैं, सुनने के बाद आप बताइएगा आपको कैसा लगा और फिर स्टार्ट करेंगे रेसिपी को।

सो वेल लिसनर्स, अब आप सभी ने भी इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा. सो ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट था रूटीन से हटके, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने स्पाइस किचन सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं. सो आज की फर्स्ट रेसिपी के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक यूनिक पाकिस्तानी कुजीन. सो बेसिकली ये तमाम तरह एशियन फैमिलीज इस रेसिपी को ट्राई करते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम इसे थोड़ा सा अलग करके थोड़े से डिफरेंट अंदाज में ट्राई करें. इसी के लिए मैंने सोचा कि इसे मैं अपने स्टाइल में ट्राई करती हूँ और सभी लिसनर्स के साथ शेयर करती हूँ. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मेन कोर्स की. सो आज का हमारा मेन कोर्स है अचारी चिकन हांडी. सो बेसिकली इसे बनाने के लिए हमें चंद इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि बेहद सिंपल से हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज ये बहुत झटपट बन जाएगी और टेस्ट में भी बेहद अच्छी है. सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स. सो उसके लिए जल्दी से आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी, पेंसिल रेडी कर लीजिए, ताकि मैं आपसे शेयर करूँ इंग्रेडिएंट्स और आपसे कुछ भी मिस ना हो. सो वेल लिसनर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें हैं दरकार, सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 kg चिकन, 3 tablespoons कुकिंग ऑयल. आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वेल मैंने देखा है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो कि हैं हेल्थ कॉन्शियस, सो वो प्रेफर करते हैं ऑलिव ऑयल को इंस्टेंट ऑफ कुकिंग ऑयल पे. सो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो. सो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है 1 cup योगर्ट, साथ ही साथ 2 adad टमाटोज, 1 onion, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoon अचारी मसाला, 1 tablespoon कलौंजी, 1 tablespoon सौंफ, 1.5 tablespoon मेथी दाना एंड 1.5 teaspoon जीरा. एंड 1.5 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1.5 tablespoon टर्मेरिक नमक, हसबे ज़रूरत हसबे जायका. और फिर आगे आ जाती हैं 2 adad ग्रीन चिलीज, 1.5 teaspoon गरम मसाला, फ्रेश कोरिएंडर. सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट प्लस स्पाइसेस जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इस रेसिपी के अंदर और फिर बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को. सो आई होप आप सब ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे. वेल फिर भी अगर आपसे हो चुका है कुछ भी स्किप, सो डोंट वरी, आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे एरिया के व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 01157100971. सो जितनी देर में आप इन इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हैं या फिर आप अपने किचन में जाकर चेक करते हैं कि क्या आपके पास ये तमाम तरीज़ा घर पर मौजूद हैं या नहीं, उतनी देर में हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक. सो ट्रैक है हमारे पास एक बेहद खूबसूरत सा, जो कि हमारे एक लिसनर ने हमें रिकमेंड किया है. सो सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पर आपसे शेयर करूंगी फुल रेसिपी.

लिसनर्स, ट्रैक तो हमने सुन लिया, अब ज़रा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारी रेसिपी को. सो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपसे शेयर कर दिए थे और आप सभी ने नोट कर लिए. अब ज़रा देखते हैं किस तरह से हम इस रेसिपी को बनाएंगे. सो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन. आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं चिकन अचारी हांडी, सो आई प्रेफर कि आप हांडी ही लें. सो उसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद उसे कर लेंगे अच्छे से गर्म. गर्म करने के बाद कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और ज़ीरा, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को कर देंगे शामिल. शामिल करने के बाद हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे. सो जैसे ही ये फ्राई हो जाए, सो अब बारी आती है कि हम बीच में शामिल कर दें प्याज. प्याज को बारीक कट करके शामिल कर देंगे इसी कुकिंग ऑयल के अंदर और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे. सो आपने याद रखना है कि आपने कभी भी ओवर कुक नहीं करना. सो इस सूरत में आपका प्याज डार्क कलर का हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी ओवरऑल जो रेसिपी है वो अफेक्ट होगी और रेसिपी का कलर भी गाढ़ा होगा. सो फिर इसमें आप शामिल कर दें, जैसे ही आपका प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे 1 से 2 मिनट में हिला के पका लें. सो अब बारी आती है चिकन शामिल करने की. सो बीच में अब हम चिकन को शामिल कर देंगे. 7 से लेकर 8 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भूनेंगे. भूनने के बाद शामिल करेंगे टमाटोज, रेड चिली, हल्दी, नमक, इन तमाम तर स्पाइसेस को शामिल करने के बाद इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटोज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए. सो जैसे ही आपको लगेगा आपके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, सो इट मीन्स कि आपने इसे ठीक तरीके से कुक किया है. सो जैसे ही टमाटर गल जाए, अपना पानी छोड़ दें, तो हम शामिल कर देंगे योगर्ट. सो योगर्ट को अच्छी तरह से आपने मिक्स करके शामिल करना है, धीरे धीरे शामिल करना है, क्योंकि इस सूरत में बीच में फिटकरी बन सकती हैं जो कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन को भी ख़राब करती हैं एंड टेस्ट को भी ख़राब करती हैं. सो शामिल कर दें योगर्ट. योगर्ट शामिल करने के बाद 5 से लेकर 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लें. अब बारी आती है अचारी मसाला शामिल करने की. सो आप सिंपल अचारी मसाला इसमें शामिल कर दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पेसिफिकली मसाले की रेसिपी दूं, तो वो भी मैं आपको दे दूंगी. इसके लिए आपको बस मुझे बताना होगा. वेल, यहाँ हम मार्केट से मिलने वाला कोई भी अचारी मसाला इसमें शामिल कर देंगे. ढक्कन को 10 मिनट के लिए ऊपर रख देंगे और हल्की आँच पर इन्हें पकने देंगे. फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे ग्रीन चिली, साथ ही साथ गर्म मसाला और इसे मज़ीद 2 से लेकर 3 मिनट तक पका लेंगे. सो दादा, हमारी रेसिपी हो गई तैयार. अब आप इसे फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करें. एंड में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रेसिपी है वो मज़ीद डिलिशियस दिखे, तो आप इसमें एक स्पेशल टच भी ऐड कर सकते हैं, जो कि है आप 1 टेबल स्पून अचार का ऑयल ऊपर से ड्रिजल करें. टेस्ट और अरोमा काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिलिशियस लगेगी. सो दी लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, ये थी हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी, जो कि थी चिकन अचारी हांडी. आई होप आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. सो आप इसे किसी भी वक्त ट्राई कर सकते हैं. मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आज ही से ट्राई करें. और आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, वेल जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे. लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्हें बॉयल राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं. इन दोनों का कॉम्बो भी बेहद ज़बरदस्त है. सो ये थी हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी. उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी. वेल, लाजमी ट्राई करिएगा. ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा. किस तरह से शेयर करना है उसके लिए भी तरीका बता देती हूँ. सिंपली 01157100971 आपने जाना है इस नंबर पे, और इस नंबर पे जाके आपने अपने नाम के साथ कोई भी टेक्स्ट हमें भेज देना है. सो वेल लिसनर्स, आज की सेकेंड रेसिपी की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि आपकी बेहद फरमाइशें हमें मौसूल हो रही हैं और उन तमाम ट्रैक्स को भी साथ ही साथ प्रोग्राम में शामिल करना होता है. सो सुनते हैं एक ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर हम सेकंड रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे.

लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक अदित कमर्शियल ब्रेक का। सो जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM। हम बस क्यों गए और यू आए।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदी। डियर लिसनर्स, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम थीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। डियर लिसनर्स, जैसा कि कमर्शियल ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी आज की द स्पाइस किचन की पहली रेसिपी, सो अब वक्त आ चुका है आपके साथ शेयर करने का आज की सेकेंड रेसिपी। सो आज की जो हमारी सेकेंड रेसिपी है वो भी पहली रेसिपी की तरह एशियन कुजीन में से ही है, लेकिन बहुत ही यमी है, बहुत डिलिशियस है, इजी टू मेक है। सो जल्दी से ट्राई करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सो सेकेंड रेसिपी जो हमारी आज की है, यानी क्या अभी हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू चिकन रोल। सो ये बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलिशियस बनते हैं। सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये बहुत झटपट बन जाते हैं, और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो अक्सर अवकात होता है कि जब हम कोई भी एशियन कुजीन ट्राई करते हैं, जैसे कि चिकन हांडी हो गई, कड़ाही हो गई, या फिर इस तरह की कोई भी रेसिपी, सो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं कि कुछ लाइट वेट हो, कुछ यमी हो, डिलिशियस हो, लेकिन बिल्कुल भी हैवी ना हो। सो जो चिकन बारबेक्यू रोल है ये बहुत ही ज़्यादा यमी है और बिल्कुल भी हैवी नहीं है। सो ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और हमारी जितनी भी डिवास यानी कि वर्किंग वूमेंस हैं जो कि डेली बेसिस पर घर से बाहर निकलती हैं, हाउस जॉब करती हैं या कोई भी काम करती हैं, सो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो झटपट कुछ भी बना सके और वो डिलिशियस भी हो। इसीलिए मैं इसी चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि हम उस तरह की रेसिपीज़ को डीवा डायलॉग में डिस्कस करें जो कि बेहद सिंपल हो, डिलिशियस हो और झटपट बने। सो सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ बारबेक्यू चिकन रोल के इंग्रेडिएंट्स, और जल्दी से आप अपनी नोटबुक डायरी रेडी कर लीजिए। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन थिन स्ट्रिप्स, उसके बाद हमें चाहिए 1.5 कप योगर्ट, साथ ही साथ हमें चाहिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून तिक्का या फिर बारबेक्यू मसाला। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, नमक हसबे ज़रूरत हसबे ज़ायका। सो डिलिशियस, ये वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मदद से हम बनाएंगे बारबेक्यू को। अब रोल के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 अदद रोटी, आप कोई भी रोटी ले सकते हैं, अगर आप प्रेफर करें तो आप पराठा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ हमें चाहिए प्याज 1 अदद जिसे आपने बारीक सा काट लेना है, फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज जो कि बिल्कुल बारीक कटी हुई हो, और आखिर में लेमन जूस जो कि थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर ऐड करेगा बट स्टिल ये बहुत अच्छा लगेगा और ओवरऑल हमारी रेसिपी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम क्रीमी रोल सॉस रेडी करेंगे। सो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप मायोनीज, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ नमक, और ये है वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल करके हमारी सॉस हो जाएगी तैयार। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनकी मदद से सबसे पहले हम बारबेक्यू रेडी करेंगे, फिर रोल की आउटर लेयर को रेडी करेंगे और फिर डिलिशियस यमी सॉस बनाएंगे। आई होप आपने सभी इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लिया होगा। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ फुल मेथड। सो फुल मेथड शेयर करने से पहले प्रोग्राम में 1 अदद फरमाइश को शामिल कर लेते हैं, यानी कि 1 अदद खूबसूरत से ट्रैक को। सो जी लिसनर्स, बताइएगा किस तरह के ट्रैक्स आप पसंद करते हैं, और आप इसी तरह से हमें अच्छे अच्छे ट्रैक सजेस्ट कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक रिकमेंडेशन वसूल हुई है तो वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ट्रैक के उस पार आपसे शेयर करूंगी बकिया रेसिपी। सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM।

चलो लिसनर्स, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को, जो कि है मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन रोल। सो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपसे शेयर कर दिए थे, अब हम उसके मेथड की जानिब बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम चिकन को योगर्ट, जिंजर गार्लिक, लेमन, बारबेक्यू मसाला, चिली, ब्लैक पेपर ऑयल और नमक के साथ इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स के साथ कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। सो हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन को रख देंगे तकरीबन एक से लेकर पौना एक घंटा तक। वेल, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है सो आप ज़्यादा देर भी मैरिनेशन को रख सकते हैं,

अब हम क्या करेंगे, पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, साथ ही साथ चिकन को हाई हीट पर 8 से लेकर 10 मिनट तक कुक कर लेंगे, जब तक आपका चिकन हल्का सा गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद हम ये करेंगे कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं सॉस के लिए, उन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपकी मज़ेदार सी सॉस हो जाएगी तैयार। और चिकन तो आपने पहले ही रेडी कर लिया है, सो अब हम पराठे को हल्का सा क्रिस्पी सेक लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे सॉस। सॉस लगाने के बाद फिर हम शामिल करेंगे बारबेक्यू चिकन, स्लाइस्ड अनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज और इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा टैंगी टेस्ट पसंद है तो इस सूरत में आप इस पे लेमन जूस भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो आप इसे टाइटली अच्छी तरह से रोल कर दें। रोल करने के बाद आप इसे बटर के साथ 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर लगेगा और ओवरऑल टेस्ट भी बेहद ज़बरदस्त लगेगा। सो ये थी हमारी आज की सेकेंड रेसिपी, जो कि थी चिकन बारबेक्यू रोल। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वेल, इस हवाले से अगर आपका कोई भी हो सवाल या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझ आई हो तो सिंपली आप हमसे पूछ सकते हैं 0115710971 इस नंबर पे जाके। साथ ही साथ ये था हमारा आज का द स्पाइस किचन का सेगमेंट, फर्स्ट रेसिपी एंड द सेकंड रेसिपी। लाजमी आज ही इन रेसिपीज को ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके फीडबैक का। सो आपके फीडबैक से ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है बल्कि इनकरेजमेंट मिलती है कि किस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम को, टीवा डायलॉग को आप सबके लिए मजीद बेहतर बना सकते हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अपने मज़े के सजेशंस हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें और बताया करें कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट से मुतालिक आपका क्या ओपिनियन है। सो वेल लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ कि अगर आप हमें लाइव ट्यून करना चाहते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, उसके लिए आप से मैं शेयर कर देती हूँ हमारा वेब एड्रेस, जो कि है radiofaza.co.uk। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप जान सकते हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की मालूमात रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड। सो जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ है बेहद खूबसूरत और आप भी मेरी तरह अपनी आवाज़ का जादू जगा सकते हैं, सो उन तमाम तर चीज़ों के लिए भी आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे। वेल, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिले जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के आराम से हमें ट्यून कर सके, किसी भी पार्क में बैठकर, ऑफिस में बैठकर या फिर अपने लंच ब्रेक में, सो उसके लिए आपको करना होगा इंस्टॉल हमारी एप्लीकेशन को, जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो आपने कर लेना है इसे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से करना है इंस्टॉल, उसका भी बेहद सिंपल सा तरीका है, आइए मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो आपने क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लेना है इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद बन जाना है इसी तरह से हमारी इस फैमिली का हिस्सा। वेल लिसनर, जैसे कि डीवा डायलॉग का ये जो सफर आपने और मैंने ठीक 10 बजे स्टार्ट किया था, अब अपने इख्तिताम के करीब करीब पहुंच चुका है। सो जैसा कि प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो एक बार फिर से हम आज के टॉपिक पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। सो वेल लिसनर, हमारा आज का टॉपिक कहता है कि हमेशा जिंदगी में अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आप जहां मूव ऑन कर रहे हैं, जहां आप रहते हैं, लोग आपको सीरियस ले, आपको समझें, आपको रिस्पेक्ट करें, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करें। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ
1: ਕਮਰਸ਼ਲ ਟਾਈਮ
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान कहाँ हो यार
4: कहाँ होना है ट्रैफिक में फंसा हूँ
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों जल्दी क्या है
4: यार घर की ग्रोसरी करनी है सब्जियाँ लेनी है फल लेने हैं गोश्त
3: अरे वेट वेट वेट वेट तो इतनी परेशानी क्या है यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ हलाल गोश्त एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं और हाँ ये HMC सर्टिफाइड भी हैं
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं चाहे लंच हो फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
5: Ariana Supermarket 126132 Grassington Road NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket freshness you can trust prices you'll love
6: हेलो कहाँ पर हैं आप
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ या आपके दिल में या फिर ऑफिस में
6: अरे जाने दें बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास
7: आए हाय हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप
6: अरे मिर्चों से याद आया घर में ना आटा है ना दालें हैं ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफ़ी मौजूद है और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है लेकिन आप तो आप है ना
7: तो फिक्र किस बात की है पाक फूड्स है ना जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

है मेरे बड़े अच्छे यार ने बेसिकली ओ भी या तो किसी मतलब के देखो लाइमलाइट की वजह तू आए ने तुहाडे पिछे या किसी ऐसी चीज़ की वजह तू आए ने जिहड़े सिर्फ सिर्फ दिखावा है ठीक है तुहाडे नाल बवणगे खावण पीवणगे बस ठीक है जी तुहाडा यूज़ हो रहा बेसिकली इनडायरैक्टली यूज़ हो रहा तो बस ओ बस वो कर रहे हैं होर तो उन्हों का कोई नई चीज़ नहीं है या कोई मतलब कोई स्पैशल उन्होंने स्पैशलिटी नहीं है।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

वेलकम बैक टू रेडियो फजा FM 97.1 FM। बात हो रही थी नाकाम इंसान की कि नाकाम इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जो इंसान ये मान ले कि अब कुछ नहीं हो सकता उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने दिल को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको हार मानने पर मजबूर करे। थक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, लेकिन रास्ता मत छोड़ें। रो लें, दिल हल्का कर लें, लेकिन खुद को ख़त्म करने का मत सोचें। किसी से बात करने की ज़रूरत है तो ज़रूर बात करें। किसी अपने के पास बैठने की ज़रूरत है तो बैठें, और अगर किसी लम्हे में आपको लगे कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा तो अपने रब के सामने बैठ जाएं। और वहाँ अल्फाज ज़रूरी नहीं होते, वहाँ सिर्फ एक आपकी आँख का आंसू दुआ बन सकता है। कभी इंसान कुछ मांग भी नहीं पाता, लेकिन अल्लाह जानता है कि दिल में क्या है। और यही तो ईमान की खूबसूरती है। हमें हर

साफ सुथरा के जिस चीज को हम मामूल समझ रहे थे वो दरअसल कितनी बड़ी नेमत थी। इसलिए जब तक लोग आपके पास हैं उनकी कदर कीजिए। वालिदैन से बात करते हुए लहजा नरम रखिए, बच्चों से बात करते हुए उनकी बात सुनिए, अपने दोस्त को भी कभी खुद फ़ोन कर लिया करें। हर बार ये इंतज़ार ना करें कि सामने वाला ही फ़ोन करेगा, कभी आप पूछ लीजिए कि भाई कैसे हो। कभी किसी पुराने दोस्त को सिर्फ सलाम का पैगाम भेज लें, कभी किसी ऐसे शख्स का हाल पूछ लें जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, हो सकता है वाकई उसे आपकी ज़रूरत। और सबसे खूबसूरत बात यह कि अच्छा सलूक करने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी को इज्जत दे सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, ऐसे ही किसी की हौसला अफजाई कर सकते हैं और आप किसी के लिए दुआ भी कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी इंसान को सिर्फ ये सुनने की ज़रूरत होती है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप खुद सोचिए, आपको कोई शख्स कहे कि फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपके दिल की क्या काफ़ियत होगी उस वक्त कि आप बयां भी नहीं कर सकते कि ये मिजाजन बंदा मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है। सिर्फ एक जुमला किसी इंसान को अंदर से मजबूत कर सकता है। इसलिए जहां मुमकिन हो लोगों के लिए आसानी पैदा करें। हमें मालूम नहीं कि हमारी एक छोटी सी अच्छी बात किसी की ज़िंदगी में कितनी बड़ी जगह बना लेगी। और शायद यही असल खूबसूरती है कि इंसान इस दुनिया से जाए तो उसके पीछे उसकी दौलत नहीं, उसका रवैया याद रखा जाता है। लोग ये याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा सलूक किया था, आपने उन्हें ज़िद दी या नहीं, आपने उनकी ज़रूरत के वक्त उनका साथ दिया या नहीं, आपने उनकी खुशी में खुशी महसूस की या नहीं। और यही चीज़ें इंसान को दूसरों के दिलों में ज़िंदा रखती हैं। तो आज के आफ्टरनून मिक्स भी इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी की, लोगों की, उम्मीद की और उन छोटी छोटी चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी को वाकई खूबसूरत बनाती हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द देखिए। जो कुछ आपके पास है उसमें से कम अज़ कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी इस पर आप दिल से कह सकें अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इसी एक लफ्ज़ में बहुत सुकून है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह के सांसें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने प्यारों को देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह कि गलतियों के बाद भी वापस आने का रास्ता मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कल एक नया दिन होगा और अल्हम्दुलिल्लाह की उम्मीद अभी बाकी है। तो दोस्तों, रेडियो फजा एफएम 97.1 के आफ्टरनून मिक्स में ये खूबसूरत गुफ्तगू अभी जारी है। आप मेरे साथ रहिए, अपनी चाय का घूंट लीजिए, अपने काम के दरमियान थोड़ा सा सुकून लीजिए और इस लम्हे को महसूस कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, ज़िंदगी रास्ते में गुजरने वाले उन छोटे छोटे लम्हों का नाम भी है जिन्हें हम अक्सर जल्दी में नज़रअंदाज कर देते हैं। और शायद हमें सिर्फ इतना ही करना है कि थोड़ा सा आहिस्ता चलें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, अपनों से बात करें, अपने रब को याद करें और दिल से कहें जो कुछ मिला उस पर शुक्र, जो नहीं मिला उस पर सब्र, और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद। यही ज़िंदगी है और यही हमारा आज का आफ्टरनून मिक्स है रेडियो वज़ा 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beat. Wow,
10: you are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing Fuzza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: hit music, entertainment, poetry, news and health all under one roof. Our radio station surpassed.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 0759315069. राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793.
6: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

ओके जनाब, वन सेकंड वेलकम बैक। लौट कर आ चुके हैं वापस एक छोटी सी प्यारी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। होप सो कि आप लोग हमारे साथ साथ बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का फजा 97.01 FM को ट्यून प्लस यूज करने का और फजा डैब पर हमारा साथ निभाने का। आने वाले नए मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे जिन लोगों ने अभी अभी फजा 97.1 FM एंड डैब को ट्यून किया है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 01157100971 पर व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर कॉल करके। लीजिए जनाब, हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट हुआ चाहता है अपने अंकल और आंटीज का। वो तमाम तरह अंकल और आंटीज जो प्रोग्राम को सुनते महज इसलिए हैं कि हम उनके दौर का ट्रैक उनके लिए सुनाते क्या लगाते हैं। मेरी इतनी खूबसूरत सी आवाज होती तो मैं यहाँ होता, मतलब मैं कहाँ होता, मैं फिर भी यहीं पे होता। खैर जी, फजूल सा जोक था, छोड़ें, इट्स ओके। सो हम बात कर रहे थे अपने प्यारे प्यारे अंकल और आंटीज की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट जो है वो उनके नाम जरूर करूँ, अपने अंकल और आंटीज के लिए वो वाले ट्रैक शामिल करूँ जो उनके दौर के थे, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेंडिंग चेंज होने की वजह से अब अंकल और आंटीज को उस तरह के ट्रैक सुनने को नहीं मिलते। कोई बात नहीं, आपका बंदा है ना आपके पास, वो लगाएगा आपके लिए आपकी मर्जी के ट्रैक। सो अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें तो 01157100971 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी मर्जी का ट्रैक लगा दूंगा। और अगर आप नहीं चाहेंगे अपनी मर्जी का ट्रैक सुनना तो फिर मेरी मर्जी सुननी पड़ेगी और मेरी मर्जी के मुताबिक भी कुछ खास अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स होते हैं जो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अंकल और आंटीज के दौर के वो 90s के 80s के ट्रैक लगाने बैठ गया ना, तो यकीनन मेरे बाकी जो लिसनर्स हैं जिनको वो ट्रैक्स पसंद नहीं है वो कहाँ जाएंगे। हाँ जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो हमारा चैनल जो है वो ट्यून करके आगे बढ़ जाए। मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे साथ साथ रहें, तो अंकल और आंटीज के साथ साथ यंगस्टर्स को भी साथ लेकर चलेंगे और हम शामिल करेंगे अंकल आंटीज के फेवरेट ट्रैक्स को रिमिक्स में। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्यारे प्यारे अंकल और आंटीज जो हैं इस बात का बुरा तो नहीं मानने वाले कि जी हमारे ट्रैक्स को क्या कर दिया है। उम्मीद है कि आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। देखिए आपकी जनरेशन कितनी तेज हो चुकी है, आने वाली आई हुई। सो मैं शामिल करूं अपने प्यारे प्यारे अंकल और आंटीज के लिए उनकी मर्जी के ट्रैक, उनके दौर के ट्रैक, ताकि उनको वो पुरानी तमाम तरह अच्छी अच्छी यादें आ सकें जो शायद उनकी जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं। एंजॉय कीजिएगा इन खूबसूरत से ट्रैक्स को और मैं कोशिश करूंगा कि इन ट्रैक्स के दरमियान बिल्कुल भी दखल अंदाजी करता रहूं। अब बिल्कुल खामोश तो नहीं रह सकता ना, आरजे हुआ बारजे बोलते ही अच्छे लगते हैं ना, क्या करते हैं आप भी। सो शामिल कर रहे हैं जी इस खूबसूरत सी आवाज को सुनेंगे, इसके उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। हम ये होस्ट उस्मान खान, आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम।

0: अभिषम मैं फिर से आ चुका हूँ और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपके साथ साथ हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अंकुरण आर्टिस्ट का सेगमेंट चल रहा हो तो उसके बीच में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करूँ, लेकिन वो क्या है ना कि आदत से मजबूर हूँ, इस वजह से मुझे मजबूरन आकर आपको ये बताना पड़ता है कि आपने जाना कहीं नहीं, मेरे साथ साथ रहने, और जो नए मौजूद मेहमान आए हैं उनको भी तो खुश आमदेद वेलकम जी आए ना सद बिस्मिल्लाह कहना है ना। तो बस इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं उस्मान खान, और मैं हूं ना आपका होस्ट, आपका दोस्त। 01157100971 पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता रहे हैं और मैं आपकी मर्जी के ट्रैक शामिल कर रहा हूँ। अगर किसी प्यारे को डेडिकेट करवाना चाहें तो उसे कहिए कि radiofaza.co.uk पर जाकर मुझे लाइव सुन लें और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अवल मैं चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी बातें भी कर ली जाए। क्या है ना कि मेरे से वो ज्यादा देर खामोश चुके नहीं रहने होता, तो मैं कोई ना कोई बात तो फिर करता ही रहता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ कि बात जब करूँ तो थोड़ी करूँ लेकिन अच्छी करूँ। ये होना भी चाहिए कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी ये बात कहा करता हूँ कि याद रखिएगा कि जहाँ पर आप कम बोलेंगे वहाँ पर आपकी इज्जत ज़्यादा होगी। जैसे अगर आपको कहीं पर 10 अल्फाज बोलने की ज़रूरत है तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि 5 लफ्ज़ों से काम चला लें, और अगर जहाँ पर 5 लफ्ज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर कोशिश कीजिए कि 2 लफ्ज़ों से काम चला लें, और जहाँ पर 2 लफ्ज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर खामोश रहिए। कम बोलने से आपका वकार ज़्यादा बढ़ता है, आपकी बात को अहमियत दी जाती है।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.

मतलब देखो मैं याद क्या करूँ, हिसाब लगाओ मैं याद, मैं ये भी भूल गया कि बीजीएम नीचे करना है। खैर तो मतलब सोचें कि मैं कैसा बंदा हूँ कि मैं बात को याद करने की कोशिश करूँ जो बाद में भूला हुआ हूँ, और मुझे यही नहीं याद कि मैं भूल जाता हूँ बातें। खैर तो वो मैं बात कर क्या रहा था, मैं ये भी भूल गया। मेरा ख्याल है मैं बात ये कर रहा था कि मैं बातें भूल जाता हूँ, और मेरी आदत जो है ना, एक बड़े मशहूर फिल्म स्टार हैं उनसे मेरी आदत बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। वैसे उनमें और मुझ में ना एक बात जो है वो एक जैसी है, वो ये कि ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन खैर बात हम दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि वो आपने मूवी देखी होगी गजनी मूवी, आमिर खान की एक मूवी थी ना गजनी, तो उस गजनी मूवी में प्रॉब्लम ये थी कि मतलब शुरू में तो नहीं आखिर पे जाके कहीं मिड के बाद जाकर कही थी शायद, अरसा हो गया देखी हुई अब तो याद भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो उनके सर पे लगती है चोट जिसकी वजह से वो बात मतलब भूल जाते हैं, हर 5 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं कि वो बात क्या कह रहा था या मुकाम क्या कह रहे थे, वो भूल जाते हैं ना। तो सेम एज इट इज मेरे और उनमें ये चीज सेम है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे थे, या हमने मैं खास तौर पे कि मैं भूल जाता हूं कि मैं बात कर क्या रहा था। तो बस फर्क हम दोनों में सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि उनके सर पे बाल नहीं होते और मेरे सर पे बाल हैं, बस एक इस खासियत के अलावा बाकी सारी चीज़ें हम लोगों की मिलती जुलती हैं। लेकिन हाँ उनको चोट लगी थी और मुझे ये भी नहीं याद कि मुझे कोई चोट वोट लगी थी जिसके बाद मेरा ये हाल है या नहीं। खैर जी मैं अंकल और आंटीज की बात प्रोग्राम में अंकल और आंटीज के सेगमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, और मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मेरी मजबूरी है जी, मैं आरजे हूँ तो इसलिए कहा सुना माफ कीजिएगा। और अब मजीद जो ट्रैक्स हैं उनको एंजॉय कीजिएगा। मुलाकात करते हैं इस ट्रैक के उस पार रही कि मेरे साथ, हम योर होस्ट उस्मान खान, यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 एफएम एंड डैब पाकिस्तान के शहर जेलम से। हमारे साथ हैं फरानाज यानी कि चौधरी साहब, बोल चुके हैं जी आपके प्रोग्राम में शामिल होने का, और आपने कहा जी जी जी जी गम बोलें ताकि आपकी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओके थैंक यू। ये बात दूसरों पे तो हो सकती है अमल दरामद, मुझ पे नहीं हो सकती ना, आरजे हो ना मैं कम नहीं बोल सकता, थोड़ा नहीं बोल सकता। लेकिन एक अच्छे आरजे की निशानी ये होती है कि उसको पता होता है कब कहाँ कितना बोलना है, तो बस इस चीज का ख्याल मैं रखता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भी खूबसूरत है और आप भी अच्छा बोल सकते हैं, तो जनाब आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फजा 97.1 एफएम आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जब चाहें, अगर आप इनका कॉन्फिडेंस है तो आप हमारे रेडियो का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। radiofaza.co.uk पे आप अपना खूबसूरत सा पैगाम जो है वो छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपको बुला लेगी इंटरव्यू के लिए। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ खूबसूरत है और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया सुने, तो ज़रूर हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं आप। अव्वल अब आप इंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत से ट्रैक, ट्रैक उस पार होगी एक छोटी सी प्यारी सी चुनौती कमर्शियल ब्रेक, और लुट कर वापस आएंगे कमर्शियल ब्रेक के उस पार, फिर हम शामिल करेंगे अपने तमाम दर सिख भाइयों को, यानी कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा वो पंजाबी होने की कोशिश करेगा। फिलहाल आप इंजॉय कीजिएगा, बाकी लुट कर आते हैं फिर करते हैं बातें। मैं आपके साथ आपको मेजबान उस्मान खान।

ऑलरेडी लौट के आ गए हैं वापस इस उम्मीद नाल के तुम मेरे नाल नाल हो। मैं थोड़ा अपना मेजबान उस्मान खान ते हूं जनाब वेला होया जांदा है साडे प्रोग्राम दे लास्ट सैगमेंट दा, यानी कि साडा लास्ट सैगमेंट जिहड़ा हुंदा है। मैं अगे गल कर रहा सी ना कि कोशिश करके पंजाबी विच करन दी कोशिश करना, मेरी कोई पक्की पक्की पंजाबी ते है कोनी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना कि मैं अपने सिख भरावां नूं खुश करन वास्ते कम से कम पंजाबी दे विच तुहाडे नाल गल कर लां, ते जे कोई ऊंच नीच हो जाए ते अपना प्यारा वीर समझ के इग्नोर करियो। शामिल करांगे, देखो तुहाडा फेवरेट गाना है जिहड़ा तुसीं सुनना चाहते हो तुसीं मैनूं जरूर दस सकदे हो जनाब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स बात
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
7: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005. By providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है.
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ.
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
11: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: दीजिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger and better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: कहां। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, ND24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: सुनते रहिए Radio Fazaa 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: नहीं। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।

मेहमा किसे किसे पुकारिए किसे किसे पुकारिए जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

दुनिया ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फैजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You're listening to 97.1 FM. This is Radio Fazer.